सोकेजी ये लगा ये लगे द टांग वाला तत्ता सुसे क्यों येरा तत्ता सोली दासे खामोश है मन लग रहा पास येरा कसम दे ची गोरे वज़ान मुदा ककड़े दे यार ची बस द टांग वाला ये द टांग वाले सर दवानी वाले चिकम देखा ना जान बिल्कुल चिकम दे दासे कड़े देखा ना चले कमों को बस दुई द कस्टम मैसेज ना को और द टांग वानी वाले उच्च बस मुंग हम दुई द कस्टम मैसेज ना को ये लगता तासुल कब गोरे बद शाम शाला

अच्छा जी, सो मकड़ा यारा मकड़ा नूरी मकड़े इशारे और जटूल तो हर कली स्टडी मशी पखेरा ले इंशाल्लाह इंशाल्लाह था सुशी कम मोहब्बत न वरकड़ी दी सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान ला अक मम्मी ने था सु वरकड़ी दी सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान ल साइन वड़ आज सासुर मिनी कदर कोम आज सासुर हुलूस कदर कोम सासुर मोहब्बत नु कदर कोम अल्लाह दे बिल्कुल जी तासुल नूर हम ताकत दर की अल्लाह दे तासुल नूर हम द मोहब्बत न द गमीन चिकम दे मुक्सरा ज्यादा की मुदगमीना व इंशाल्लाह ज्यतीगी चकल तासु इंतहाब को इदा जरूर पमीना की आदा गफल द किशर पमीना की द मशर पमीना की नु इंशाल्लाह इंशाल्लाह तासु बियागुरी चिसुमर दग मोहब्बतुना आ चिकम दे ज्यतीगी और सुमरा चिकम दे सेवा कीगी जस सासु ने इल्तिजा कोमा आज सासु चिकम दे इंशाल्लाह इंशाल्लाह दग तवकुस तासु ने साथमा आदा गमीना ज सासु ने साथमा चि लाजिमी बतासु इजना का कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान ल चिकम दे द गमीन वर्कवे द मोहब्बत न वर्कवे लाजमी बे वर्कवे खाम खा बे वर्कवे और चिकम दे जमुग सर बदगा मीना मोहब्बत चिकम दे लाजमी शामिल हुई नो जमा सुमर मुखी जमा सुमर हम रू नदी नु इंशाला यूजल चिकम दे द गमीना मोहब्बत चिकम दे तासु अपनाओ कई द गमीना मोहब्बत चिकम दे तासु वर्क दगा इजना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान ला बिया तासु गोर इंशाला इंशाला चेतासु तसुमर रिजल्ट में लावेगी तासु बिल्कुल जी सर डिस्पाड़िए तासु मुतमाइन ये तासु तजब कम दे खुला में लावेगी चे खुला में लाओ निश्वला सर डिस्पाड़ निश्वली मुतमाइन तासु निश्वली जमंग द क्रीम ना जमंग द शैम्पू ना जमंग द ऑयल ना जमंग याद नूर प्रोडक्ट ना जमंग द ब्लीच ना नो बिल्कुल जी रात लेक्षी माता ब्या गिलो का माता ब्या शिको का आओ जिसना गिला शिको मा कबूल नकड़ आया था तखपली पैसी वापस मिलाओ निश्वले इट्स ओके बिल्कुल जी वापस राशा और भी मातु हसा मा तखपली पैसी वापस नहीं दी मिलाओ शिवी गुरु जीता दे मिलावी गोर खन मिलावी।

अच्छा जी सो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छे तासुरा मोहब्बतुन मंगल राखी जमा सुमर खामोश खोइंदी दी जमा सुमर हम और इदुन की दी इंशाल्लाह उम्मीद दर बदे जे तासुब द गमीना मोहब्बत मंगल लाजिमी राखोई खाम हावना कोई के टांग वी के दवानी वी और तास्तो मावली के टांग की जमंग दिसा का उस्मेटिक्स पाकिस्तान दगा प्रोडक्ट चिकम दे चा तो हम पकार वी अकम जे के हम पकार वी कम सीमा के हम पकार वी आनो पटां के जमंग चिकम डिस्ट्रीब्यूशन दे अगर बिल्कुल जीता सुत मिलावी गी पटां के मंसूर जन स्टोर सदाम मार्केट टांग के हाजी जदवत खान से सरा और मुजीबुर रहमान से सरा अनु जरबतान जी लता सुरतलेश और समूह दगा इस ना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान दगा प्रोडक्ट यूनिटी तर लांस कोलीशे उदजान द भारती रावल लेशे अदिन अलावा पवाना की चिकम जमंग डिस्ट्रीब्यूशन दे अगद हाजी बाज मामद सेफसरा और गुल मामद सेफसरा जी बिल्कुल जी दे इत्तेफाक जनरल स्टोर कॉलेज रोड वाना बाजार की दुता स्वर्त वर्तलेश शई और जमंग दे इजना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान दा प्रोडक्ट नथी बिल्कुल जी तरला से कवले शई दिन अलावा चिकम दे पगाव अमाखेल महल्ला शादी खेल की दहाजी जरबत खान से दिल्ली चिकम कूर दे वो हगी के हम दिजना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान प्रोडक्ट मिलावेगी नुक आला गजी नजमंग खुएं दे जमंग द इजना आई जिड इन ए क्रीम अखली या चिकम दे तेल अखली शैम्पू अखली या चिकम दे फेस वॉश अखली या नूर दास घट प्रोडक्ट कम अखली आगे तब बिल्कुल जी ब्लीच चिकम दी ब्लीच आगे बोता फ्री अपकास्ट मिलावेगी तो तासु अर्थलेश औदा मोहब्बतुनती त हासिल वलीश दगा मोहब्बतुनती आगे सलेश।

0: It's 10 o'clock.
1: It's 10 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4.
2: जिंदगी में सुकून सेह से जुड़ा होता है और जब इलाज कुदरती हो तो यकीन खुद बहुत बढ़ जाता है। इश्मा हर्बल ऑयल, कुदरत का इलाज, सुकून का एहसास और शफा का भरोसा। इश्मा हर्बल ऑयल कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा एक ऐसा ऑयल जो बेशुमार बीमारियों में मुफीद है, जैसा कि मैदे की तेजबियत, जलन, बदहजमी, बोक की कमी, कब्ज, दिल और गुर्दों की तकलीफ, जोड़ों और पट्टों के दर्द, सर दर्द, मुंह के चाले, ये सब तकलीफ अब खत्म, क्योंकि हल है सिर्फ और सिर्फ इश्मा हर्बल ऑयल। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा ये शिफा बहश ऑयल जिस्म के अंदर और बाहर दोनों के लिए मुफीद। इश्मा हर्बल ऑयल, कुदरत का मुकम्मल इलाज, हर दर्द का आसान हल।
3: यू आर लिस्टिंग रेडियो अमन 88.4 टांग। स्टे ट्यून्ड विद अस।
4: मल्की और गैर मल्की हर किस्म प्रोडक्ट हर सोमा माँ पजवन के दस एक कंपनी नीदी खलक व सर दुमरा मीन और खलक होता दुमरा फायदा मिलाएगी। आगा कंपनी द इश्मा कंपनी रहा चाचा इश्मा प्रोडक्ट बकारी माँ सरा मिलाएगी और बगरंटे सर बोर को पाकिस्तान जिंदाबाद। इश्मा कॉस्मेटिक्स पाइंदाबाद।

ओके सी जे संग संग रसर अगर से तब ये दो सेड़ा गोला है तो यार में बीठी भी मुरी दो सेड़ा गोला है। हां हां।

Rahman Rahim. Assalamu alaikum and very warm welcome. Very warm welcome to all the sweet listeners of Radio Pegam 97.4 Pahadpur, Global FM 91 Dera Ismail Khan and Radio Amat 88.4 Dank. जी जनाब, तीन रेडियो स्टेशंस और एक आवाज़. और ये आवाज़ किसकी है जनाब? ये आवाज़ है केसन नेचुरल पाकिस्तान की, ये आवाज़ है शिफा की, ये आवाज़ है सेहत और तंदुरुस्ती की. जी जनाब, एक नए दिन के साथ, एक नई शुरुआत के साथ जनाब आप लोगों के साथ हाजिर हो चुके हैं. सुपैर के चार बज चुके हैं जनाब. सलाम कबूल कीजिएगा. मुझे कहते हैं खालिद साहब, अवान बुध का दिन है आज, तो जमादी और अव्वल है 14 अक्टूबर और अस्सु की 29 तारीख. जनाब हर रोज की तरह आज भी आपकी खिदमत में हाजिर और आज भी ढेर सारी बातें लेकर जनाब आप लोगों को सुनाने. ये जनाब आज की खिदमत में हाजिर हो चुके हैं. आप सुन रहे होंगे मुझे, टांक में मौजूद हैं तो रेडियो अमन से सुन रहे होंगे, डेरा में मौजूद हैं तो ग्लोबल एफएम 91 से सुन रहे होंगे, और अगर पहाड़पुर में मौजूद हैं तो जनाब रेडियो पैगाम 97.4 की फ्रीक्वेंसी के ऊपर मेरी आवाज को सुन रहे होंगे. जी जनाब, हर रोज की तरह आज भी आपकी खिदमत में बराह रास्त प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं और केसन की बातें होंगी जनाब पूरे घंटे में. केसन की बातें कैसी बातें होती हैं? केसन की बातें प्यारी बातें होती हैं. केसन की बातें सेहत और तंदुरुस्ती की बातें होती हैं. केसन की बातें शिफा की बातें होती हैं और केसन की बातें हुस्न और खूबसूरती की बातें होती हैं और प्यारा बनाने की बातें होती हैं. क्योंकि जनाब केसन नेचुरल पाकिस्तान जो प्रोडक्ट तैयार करती है जनाब, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं और नेचुरल एक्सट्रैक्ट से हम आप लोगों की खूबसूरतियों को बढ़ाते हैं, आपके नए नक्श को सवारते हैं और आपको सेहतमंद जिंदगी गुजारने की राह दिखाते हैं.

0: कहीं वो
1: जी सामने ग्राम, आप जिस इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं, बहुत सारे दौरों से गुजरते हैं, बहुत सारे अदवार से गुजरते हैं आप, और हर उम्र के हिस्से में कुछ न कुछ इंसान जो है वो सीख रहा होता है। लेकिन जिंदगी का एक मोड़, एक दफा आपकी जिंदगी में सामने ग्राम ऐसा आता है जब ऐसा लगता है जैसे सब आपको छोड़ गए हैं। आप आवाजें देते हैं, कोई आपके नजदीक नहीं आता, और आपको ऐसा लगता है जैसे आप बिल्कुल तन्हा हो गए हैं और आपकी जिंदगी बस यही खत्म होने वाली है, और आपने जो जीना था वो जी लिया है और आप मजीद जीने की गुंजाइश

जी समझ, आमतौर पर क्या समझा जाता है कि जब भी ताकत की बात की जाती है और कमजोर जिस्म को ताकत देने की बात की जाती है तो हमारे जहनों के अंदर हम सिर्फ दूध को जहन के अंदर लेके आते हैं या फिर खुश्क फलों को लेकर आते हैं या फिर सेब को लेकर आते हैं कि ये चीजें इस्तेमाल करेंगे तो ताकत आएगी। नो डाउट ये सारी चीजें ड्राई फ्रूट्स हो गए, एप्पल हो गया, सेब हो गया, ठीक है जनाब, और साथ में दूध हो गया, ये सारी ताकतवर चीजें हैं। लेकिन आप यकीन कीजिए कि इन तमाम चीजों से बढ़कर भी कुछ चीजें मौजूद हैं जो कि जड़ी बूटियों की सूरत में मौजूद हैं, और जब आप उनको इंटेक करते हैं, लेते हैं, तो आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। इन्हीं जड़ी बूटियों के अंदर अश्वगंधा एक जड़ी बूटी है, सफेद मूसली एक जड़ी बूटी है, और सतावर, ठीक है जनाब, सतावरी जिसको कहा जाता है, ये भी एक जड़ी बूटी है जो कि कमजोरी को, जिस्मानी कमजोरी को इंस्टेंट तौर पर, फौरी तौर पर खत्म करते हैं। तो जनाब ऐसे लोग जिनका वजन नहीं बढ़ रहा और उनका वजन एक जगह रुक गया है, जिस्म में खून की कमी है या हर वक्त थकावट रहती है, आप हर वक्त थके थके से रहते हैं, तो ताकत प्लस को रोजाना इस्तेमाल करने से आपकी एनर्जी बहाल होती है, आपके जिस्म को जितनी तवानाई चाहिए वो इस ताकत प्लस के इस्तेमाल से मिलती है। क्योंकि जनाब जब आप एक दूध का गिलास पीते हैं और उसके अंदर जितनी कैलोरीज होती हैं, ठीक है जनाब, जितनी कैलोरीज उस दूध के अंदर होती हैं, उससे 2 से 3 गुना ज्यादा कैलोरीज आपके जिस्म को मिल जाती हैं जब आप 1 कप दूध के अंदर 2 चम्मच ताकत प्लस मिक्स करके पीते हैं। बहुत सारी वजूहात हैं, जैसे कि ये जड़ी बूटियां हैं, जैसे कि अखरोट, पिस्ता, बादाम, काजू इसके अंदर शामिल है, जैसे कि भुने हुए चने इसके अंदर शामिल है, जैसे कि सत्तू इसके अंदर शामिल किया गया है, या फिर इसके अंदर जो सफेद तिलों को इस्तेमाल किया गया। कहा जाता है कि जनाब दूध से कई गुना ज्यादा कैल्शियम सफेद तिलों के अंदर पाई जाती है, और हम इस प्रोडक्ट के जरिए आपको जी जनाब रोजाना की डाइट में ये सफेद तिल जो है इसी प्रोडक्ट की सूरत में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जनाब जिस्मानी कमजोरी, ऐसे लोग जिनको जिस्मानी कमजोरी है भाई, वो इसको इस्तेमाल करेंगे, जिस्मानी ताकत मिलेगी। ठीक है जनाब, आपको मर्द हैं और स्टेमिना की कमजोरी है, तो जनाब ये ताकत से भरपूर प्रोडक्ट जो है मर्दाना ताकत को बहाल करते हैं, हार्मोन बैलेंस होता है, और इन चीजों को सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है मर्द की सेहत के लिए, स्पेशली अश्वगंधा, सफेद मूसली, सावर और खुश्क मेवा जात को, ये मर्दों की सेहत के लिए इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस प्रोडक्ट की सूरत में आपको एक ताकत से भरपूर खजाना इस्तेमाल करने को मिलता है। खवातीन के लिए किस तरह इस्तेमाल है कि जनाब इसके अंदर मौजूद जड़ी बूटी सतावर जो है हार्मोन्स को बैलेंस करती है, और दूध पिलाने वाली माओं के लिए दूध बढ़ाने और कमजोरी दूर करने के लिए ताकत प्लस एक बेहतरीन मुरक्कब है। पीसीओज, ठीक है जनाब, और थकावट, ऐसी खवातीन जिनको हर वक्त थकावट रहती है उसको खत्म करने में इसका बहुत बहुत बहुत बड़ा रोल है। तो जनाब केसन ताकत प्लस ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए, चाहे आप मर्द हैं या औरत हैं, ठीक है जनाब, आपके लिए बेहद मुफीद है। इसके लिए तलबा, ठीक है जनाब, या ऐसे लोग जो दिमागी काम करते हैं, ठीक है जनाब, एक मजदूर है जो जिस्मानी काम करता है उसको भी कमजोरी होती है, ठीक है जनाब, और उसके लिए भी ताकत प्लस बहुत मुफीद है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो दिमागी काम करने वाले होते हैं, जैसे कि तलबा हो गए, तो जनाब बादाम, अखरोट, काजू ये दिमाग को ताकत देने वाले हैं, याददाश्त और फोकस को बेहतर करने वाली चीजें हैं, और इम्तिहान देने वाले बच्चों के लिए ताकत प्लस इंतहाई अहम और मददगार है।

0: लीजिए, बताकर प्लस आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे फायदे भी हासिल कर रहे होंगे। तो जनाब इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ आ चुके हैं जनाब, और उनको हम मौका देते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। जिस्मानी कमजोरी, दिमागी कमजोरी को, आसाबी कमजोरी को खत्म करने के लिए ताकत प्लस का रोजाना इस्तेमाल आपको चंद दिन के अंदर ढेर सारे फवायद दे सकता है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: जनाब जी सन्नल सादिक भाई वेले नाल सा कुछ ज्वाइन कर छोड़ा ने सादिक भरा की में हाल है? ठीक ठाक है वेत सा
1: के लाल मार वेले नाल आज ब्रेक तो कुछ ब्रेक लग सी लाल
0: नहीं तो लाल दी ब्रेक लगन वाली कोनी है जी। 120 दी स्पीड ही ब्रेक मारना खतरनाक होंदा है, तो तुसा मेरे को 120 दी स्पीड ही ब्रेक मरवा छोड़िए पता होवे तो को मैं वो स्पीड ही वेंदा पिया तो तुसा मेरे को रोक छड़ायो। चलो मैं आके भाई अगो कोई बंदा अहम बंदा आगे चलो थोड़ी ब्रेक मारू चाहे, लेकिन इतनी स्पीड थी ब्रेक मरवीन दी नहीं कहते कोल ठीक है ना, बहुत नुकसान थी वेंदा है।
1: हां मैं तो आस्ते आस्ते ब्रेक मरेगा, तू एडी गलती न मारी कर
0: की में हाल है बिरा खान? चंगे वदे ठीक ठाक वदे तुसा?
1: शुक्र है लड़ मेहरबानी के करो से मजबूर है, आदत कर मजबूर है ना, तिना गाल करू मजा नहीं
0: है आदत से मजबूर। तो सही अगेन आज ऐसा वला के उसी प्रोडक्ट की गाल करने बैठे हैं जेरी तुम्हारे कमजोरियां को खत्म करें दिए। तो सही तुसा के आग देवे के वाकई एक कमजोरी को खत्म करने वाली शय है के नहीं?
1: नहीं नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल है,
0: बिल्कुल इंदी कुछ है कि जेले तुसा एक इस्तेमाल करें दे वे तो तुम्हारा जिसम तो को दसेंदा है कि भाई हुन पहले को ज्यादा बेहतरी आ गई है, जिसम थकदा भी नहीं, दर्द ही नहीं थींदे, ते ज्यादा कम करण ते दिल भी आदा है, ते सुस्ती भी नहीं थींदी, ये सारे गालियां महसूस थींदे ताकत प्लस दे बाद?
1: बिल्कुल
0: हर शह दूर थी वैसी। जनाब 500 रुपए विच ए महंगी तो नहीं कुछ, मैं कोई दसो पहले कोशिश ऐसा करने पे है कि हुन जेड़ा असा तो ताकत प्लस देऊ ना ओ मिल्क बेस्ड होवे, यानी कि तो दूध की जरूरत नथी वे ठीक है जी। नीम गरम पानी दे विच शामिल करो तो ऑटोमेटिकली ओ दूध दा लिकर बन वंजे, ते तो आपको दूध दा लाई फायदा मिले, ते नाल इंदा तक असल ता ए इन असल ते इंदी विच जेरे शई है ना उकू मिक्स करण दी गाल है ना ठीक है सही। असा ते दूध विच मिक्स करो, अल्लाह ताला ने दूध विच मुकम्मल गिज़ाइयत रखी है, तो ओ भी तो को फायदा मिलसी, ते नाल ए दुगना बिया भी ज्यादा तो को फायदा मिलसी। ता इंशाल्लाह महीने आला जेरा पैकेज है या जार है इंशाल्लाह बहुत जल्दी तो को मिल वैसी बिरा खान ठीक थे क्या? सिर्फ नीम नहीं, टी ट्री भी शामिल है, यानी कि सावे रंग आला सारा साबण जेड़ा सावे रंग दा ठीक है, ओह दाणा को खत्म करने वास्ते बहु ही करामद है, बहु ही आला किस्म दी शै है ठीक है भाई जान।
1: बड़ी मेहरबानी शुक्रिया तमाम सलाम
0: जी, बहुत शुक्रिया जनाब। ये जो हमारा गो पिंपल साबन है ना, गो पिंपल ये हमारा साबन भी है और फेस वॉश भी है, तो हमारे इस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी इसकी फायदे का अंदाजा आप इस चीज से लगाइए कि इसके अंदर हमने साबन भी बनाया है और फेस वॉश भी बनाया है, यानी कि ये इतना चलने वाली प्रोडक्ट है। गो पिंपल साबन भी है, फेस वॉश भी है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम सर जी,
0: हाँ जी नूना बहु दीवारा बाद बहु अरसे बाद आज हाजरी करें कि हाल है सही चंगे मदे में तुसा? हाँ बिल्कुल मसरूफ हवे तुसा, बिजी वदे हवे किथे ही, ते मेरा ख्याल टाइम ही तोरा इन टाइम जरे छुट्टी नहीं थई होंदी बठे कोल अच्छा चलो फ्री थी गया हवे सनी है अल्लाह दे शुक्र है। ऐसा आते पे भाई जरा केसन दा ताकत प्लस है ना, ताकत प्लस ओ हर किस्म दी कमजोरी को दूर करें दे, तो आपको किवें लगे तुसा जो इको इस्तेमाल कीता आवे बस इवें वक्त गुजरे या कोई इंदे नाल पता ही लगदा है कि वाकई कमजोरी खत्म थई है? जी
1: 4 किलो
0: वजन वध गए माशाल्लाह, वजन ही वध गए, ते कमजोरी ते सुस्ती ते दर्द जिस्म दे खत्म थी गया उसन?
1: हां ਦਰਦ ਮਰ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰੇਂਦਾ ਕੁੱਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਕੋਨਾ ਕਰੇਂਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ 60 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ
0: ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਂ ਵਾਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਰੀ ਵਜ਼ਨ ਵਧੇਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਘਟੇਂਦੀ ਹੈ ਵੇਟ ਕੰਮ ਕੋ ਖਾਸੋ ਤਾਂ ਚਰਬੀ ਪਿਘਲ ਕੇ ਤੇਰਾ ਵਜ਼ਨ ਕਮ ਥੀ ਸੀ ਤੇ ਤਾਕਤ ਪਲੱਸ ਕੋ ਖਾਸੋ ਤਾਂ ਵਜ਼ਨ ਵੱਧ ਸੀ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਰਪੂਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਥੀ ਹੈ ਤੁਹਾਕੂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ
1: ਸਰ ਜੀ ਤਾਕਤ ਪਲੱਸ ਖਾਦੇ ਨਾ ਆਲੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਸਰ ਜੀ
0: ਕਿਸੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਯਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤਾਕਤ ਪਲੱਸ ਕੇ ਗਿਨ ਕੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਵੱਧ ਦੇਖੋ ਵਜ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਸ਼ੈ ਅਸਾਂ ਕਿਉਂ ਦੇਸੂ ਬਈ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ
1: ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ
0: ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜ ਪੂਰਨਾ ਕੋ ਆਦੇ ਪੈਵੇ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਸਮਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸਮ ਦੁਬਲਾ ਪਤਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ
1: ਮੇਰਾ ਤੀਨ ਫਲਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮਝ ਮੈਨੇ ਜੱਜ ਤਕਰੀਬਾ 2 ਕਿਲੋ 3 ਕਿਲੋ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ
0: ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਧ ਸੀ ਸਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸੀ ਅਗਰ ਰੋਟੀਨ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ
1: ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਡੀ
0: ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੋਈ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਤੁਹਾਡੇ ओके जनाब थैंक यू जो वेरी मच जी नूना सेठ हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि मेरा भी वजन बढ़ गया है तो भाई ऐसे लोग जिनका जिस्म कमजोर है लड़कियां मुझे सुन रही हैं भाई तलबात सुन रही हैं और उनका दिमागी काम है या ऐसे लोग जिनका जिस्मानी काम होता है केसन नेचुरल पाकिस्तान की ये प्रोडक्ट जिसका नाम है केसन ताकत प्लस फौरी तौर पर आपके जिस्म को वजन बढ़ाने और कमजोरी को खत्म करने के लिए मुआविन है अस्सलाम वालेकुम ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੀਤਾ ਗਾਇਬ ਥੀ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਤਾਕਤ ਪਲੱਸ ਕੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਈ 4 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੁਣ ਹਵਾ ਨਾਲ ਨਾ ਉੱਡ ਸੈਨੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਗਫੂਰੀ ਮਕਾਲ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਦਰਿਆ ਖਾਨ ਵਿਚ ਪੰਜ ਗਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿਚ ਤੇ ਚਾਚੇ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਫਾ ਦਰਦ ਭੇਜਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆਖੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਤਾਕਤ ਦੇਵਣ ਸਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਕਤ ਪਲੱਸ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਨਾਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਈ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਪੰਜ ਗਿਰਾਈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਾ ਗਫੂਰ ਜੋ ਹੈ ਇਨਕੇ ਪਾਸ ਕਿਸਮ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੌਜੂਦ ਹੋਤੇ ਹੈ ਸਾਦਾਤ ਕੰਡਾ ਕੇ ਸਾਥ ਇਨਕੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜਨਾਬ ਵਹਾਂ ਪਰ ਜਾਏਂਗੇ ਔਰ ਪਤਾ ਕਰੇਂਗੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕਿਸਮ ਕਾ ਤਾਕਤ ਪਲੱਸ ਵੇਟ ਕਮ ਪੇਟ ਕਮ ਹਾਜ਼ਮਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਰਪ ਸ਼ਿਫਾਏ ਦਰਦ ਕੇਸਨ ਕੇ ਨਏ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਇਨਕੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈ ਜੈਸੇ ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਸਕਿਨ ਕਲੀਅਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਛਾਇਆ ਹੁਆ ਹੈ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਜਿਸ ਜਿਸ ਘਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹਮਾਰਾ ਇਹ ਬਿਊਟੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਕੇਸਨ ਸਕਿਨ ਕਲੀਅਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਨਾਬ ਉਨਕੋ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਹਮਨੇ ਸੈਂਪਲਸ ਕਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗਹੋਂ ਕੇ ਉਪਰ ਆਪਕੋ ਇਸਕੇ ਸੈਂਪਲ ਕੱਲ ਸੇ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੀ ਕੋ ਮਿਲੇਂਗੇ ਉਸਕੇ ਲਈ ਹਮਨੇ ਇੱਕ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਸਕੇ ਤਹਿਤ ਆਪ ਲੋਕੋ ਕੋ ਮਿਲੇਂਗੇ ਜੈਸੇ ਆਜ ਹਾਜੀ ਜ਼ਰੀ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਜ਼ਫਰਾਬਾਦ ਮੇਂ ਸੈਂਪਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈ और वहां पर 1000 की जो आप प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उसके साथ आपको स्किन क्लियर फार्मूला जो है वो मुफ्त में मिलेगा, लेकिन कम से कम आपकी 1000 की खरीदारी होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम। लाला जाहिद लाना पिया
0: जी, जाहिद लाड को लाने पे। जाहिद भाई की भी हाल है? जाहिद भाई चंगे बदे में ठीक ठाक है? प्रोग्राम सुनने बैठे पे चाह शाह पी छोड़ी हुई, यहाँ तक चाह नहीं मिली पहले तो समय को।
1: नहीं लाला लाला चाह सा को 2 बजे मिल वे, शुक्र है।
0: अच्छा 2 बजे नाल मिल वेंदी है
1: जी? अच्छा 2 बजे नाल मिल, क्यों जो सियाल है ना जमात सवेरे थी दी है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, जल्दी जल्दी तू सब पी गिनने वे। सुनो की हाल है? सही चंगे बदे वे खैर खरी
1: अलहमदुल्ला। जी सारी जफरान करीम इस्तेमाल की थी से सा रंगपुर दे तो मैं गिने अच्छी जनरल चोर।
0: अच्छा जी ठीक है,
1: ते उनका बहुत अच्छा रिजल्ट है बहुत।
0: अच्छा जी, साबुन नाल जफरानी गिदा आवे या सिर्फ जफरानी क्रीम गिदा?
1: सिर्फ जफरानी क्रीम गिदा दे 5 दिवार ने जो रिजल्ट दिता सा को 5 दिवार।
0: हां जी बिल्कुल, सारे कोई भी क्रीम तो सा ट्राई करे सो ना, ए तो सा एक नंबर क्रीम ट्राई कीजिए। असादी असा हैट्रिक कर छोड़ी क्रीम अंदर विच, एक सारी जफरान को बनी हुई क्रीम, एक ग्लूटाथियोन को बनी हुई क्रीम, तो हुन सीरम को बनी हुई क्रीम आ गई है। तो इंशाल्लाह नवी स्किन क्लियर फार्मूला जरे तुसा बस अगर मुतमईन नहीं वे तो अगू तो वजन की जरूरत ही कोनी। अगर तुसा 100% तो रिजल्ट मिल गया ना जफरानी क्रीम ही, तो बस इसी को जारी रखो।
1: ठीक
0: है ना, इवें करे चेहरा साफ थी वे। ठीक है सही, उनके बाद रोजाना लावन की जरूरत कोनी, तो लो ही नहीं रोजाना। ठीक है, बाद उन्दे बाद हफ्ते च 2 दफा या 3 दफा एक डर छोड़ एक रात छोड़ के लाओ। ठीक है, यानी कि दूजा हफ्ता उन्दे बाद बाद हफ्ते च एक या 2 दफा लाओ। जरूरी नहीं होता कि क्रीम को तुसा सारी जिंदगी हफ्ते दे 7 रातियां लावनी है, उतने तक क्रीम को इस्तेमाल करो जितने तक चेहरा
1: रोजाना लावे।
0: नहीं पर जेले चेहरा साफ थी गए, रंगत साफ थी गई है। ठीक है सही, तो उन्दे बाद डेली दी जरूरत को नहीं, हफ्ते 2-3 दफा ला के चेहरा इवें खिला खिला जबरदस्त खूबसूरत प्यारा राशि इंशाल्लाह। ठीक है जाहिद भाई?
1: ठीक है
0: जी, सारे सलाम। बहुत शुक्रिया जनाब, सब सुनने वालों के सलाम। और बोल रहे थे कि जाफरानी क्रीम का रिजल्ट 5 दिन के अंदर मिला है जनाब। तो जनाब केसन ने इस वक्त चेहरे के लिए 3 किस्म की क्रीमें आप लोगों को दी हुई है, केसन जाफरानी क्रीम, उसके साथ जाफरानी साबुन भी है 250 रुपए का, इसके अलावा ग्लूटा क्रीम है जनाब, उसी के साथ जो है ग्लूटा का साबुन भी है, और अब आ गई है स्किन क्लियर क्रीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, हाजी ताहिर हाफिजाबाद कुल है जी। बिस्मिल्लाह करो सही, मोर से बाद आई था पुराने पुराने आवाज सब सुनने को मिलते पे माशाल्लाह।
1: नहीं सर, मैं तो प्रोग्राम रोजाना सुनता रहना, तो मैसेज ही करेंदा रहना, कॉल नहीं लगती भाई।
0: अच्छा चलो, कॉल ही आज लग गई मेरे भरा दी था। किवे हाल है? सही चंगे वे ठीक ठाक
1: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल तो बड़ी आफरा शुरू हुई सर,
0: आफरा शुरू हुई, तो असा तो तुम्हारे वास्ते एक सरप्राइज गिफ्ट ही रख के पाए जो भाई हाजी ताहिर आसी सारे को नवी क्रीम दे फार्मूले देसू, ना सिर्फ आप लासन बल्कि ना 3-4 गवांडियां को भी देसन, ते देसन के भाई ऐसी कंपनी है जेरे पहले सैंपल दे दिए चेक करो ते बाद ही गिने सारी क्रीम।
1: नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह साहब, अगे सारे फार्मूले इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आ रही है। बोरी अल्हम्दुलिल्लाह जेरी शायद तुसा भेजी है ता सीधे ना स्टोर ते ही पई है सर।
0: हां बिल्कुल, हसीब ते भी हैदर मेडिकल स्टोर ते भी तुम्हारे रंगपुर ते इतना बिल्कुल पहुंचे पहने पहुंचे जिम्मे लॉन्च थी फौरन शह पहुंच पे सारी नवी क्रीम जन है स्किन क्लियर फार्मूला। ठीक है जनाब, 450 रुपए की एक क्रीम है, ते इंदे इलावा जेरे है ताकत प्लस ही सारी एक प्रोडक्ट है, वो पता तुसा इस्तेमाल हाले तक कीती है या नहीं कीती, 2 चम्मच दूध दे विच शामिल करके पीवना होंदा है, ते इवें बंदा जवान थी वेंदा है, ते ताकत आवेंदी है पूरे जिस्म विच।
1: भाईओ जे छे ता बोलो जो जवान थी वजो बोलो दीने वाले
0: जवान। देखो तुम्हारे वालों को खूबसूरत रखने वास्ते सारा हेयर केयर जोड़ी है, ऑयल ते शैम्पू है, जने तुसा दीवाने ही वे इवें है के नहीं सही?
1: बिल्कुल दीवाने है, वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आला थी उन्होंने।
0: टांकला को तो सा क्या सो शैम्पू दे बारे, टांकला को फिलहाल हम तक पूरी समझ नहीं आती पी शैम्पू दी कि केसन शैम्पू केरी शह है, टांकला को अपना एक मैसेज दे आई शैम्पू दे हवाले नाल।
1: टांकले बिरा जितने छोड़े पे अल्हम्दुलिल्लाह सा तो दिया शैम्पू इस्तेमाल करना छोड़ दिता है, यो खलील बे लगे रहे ना टेस्टिंग वाला शैम्पू सा इस्तेमाल करें दे पे माशाल्लाह वाल ही नरम रहने ते
0: खुश्की खत्म करें दे, ढांदे वाल रुक वेंदे, वाल सिल्की थी वेंदे, रेशम वाली कार। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੇਸਨ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੀ ਤਰਫ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਵੱਧ ਬਹਿ ਸ਼ੈਂਪੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਮਸਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਵਰਸੇ ਬਾਅਦ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਸਾਂ ਪੜ ਵੀ ਗਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਥੀਂਦੀ ਹੈ।
1: ਬਿਲਕੁਲ,
0: ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕੀ, ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਜਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ। ਹਾਂ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਜਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਤੋ ਇਨਕੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇ ਤਾਕਤ ਪਲੱਸ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਔਰ ਦੇਖੇ ਯੇ ਜਬ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਜਬ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਿਸਮ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਉਸਕੋ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਰਿਕਵਰੀ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਉਸਕੋ ਕਿਆ ਰਿਕਵਰੀ ਟਾਈਮ। ਯੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜੋ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਤੋ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਔਰਤ ਕੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਹਮ ਯੇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪ ਆਫਟਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜੋ ਹੈ ਮਾਂ ਕੋ ਤਾਕਤ ਪਲੱਸ ਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਏਂਗੇ, ਤੋ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਏਕ ਤੋ ਬੱਚੇ ਕੋ ਦੁੱਧ ਕਾਫੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਇਸਸੇ ਦੁੱਧ ਕੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ ਖਵਾਤੀਨ ਮੇ ਯੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਉਨਕੋ ਔਰ ਬਾਹਰ ਕਾ ਦੁੱਧ ਉਨਕੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪੜਤਾ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਇਸਕੋ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਂਗੇ ਤੇ ਏਕ ਤੋ ਉਨਕੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਆਫਟਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜੋ ਵੀਕਨੈਸ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਬੱਚੇ ਕੋ ਜੋ ਹੈ ਵਾਫਰ ਮਿਕਦਾਰ ਮੇ ਦੁੱਧ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਕੋ ਬੜਾਨੇ ਮੇ ਤਾਕਤ ਪਲੱਸ ਕਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਯੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਸਕੇ ਉਪਰ ਸ਼ਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ। ਇਸਕੇ ਉਪਰ ਬੇਚਾਰੇ ਮਰਦੋਂ ਕੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਔਰ ਮਾਂ ਕਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਹੋ, ਤੋ ਬੇਚਾਰਾ ਕੋ ਜਬ ਬਾਹਰ ਕਾ ਦੁੱਧ ਲਗਾਨਾ ਪੜ ਜਾਏ, ਤੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਆਪਕੋ ਬਾਹਰ ਕਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਵੋ ਇਤਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤੋ ਇਸਕੋ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤਾ। ਤੋ ਆਫਟਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜੋ ਹੈ ਤਾਕਤ ਪਲੱਸ ਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮਾਂ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੋਨੋ ਕੇ ਲੀਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਬੁੜੇ ਅਫਰਾਦ ਕੇ ਲੀਏ ਯੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਪਲੱਸ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਬੁੜੇ ਅਫਰਾਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੜੇ ਅਫਰਾਧ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਭ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਵੋ ਪੱਠੋ ਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਔਰ ਹੱਡੀਓ ਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿ ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ ਸਫੈਦ ਤਿਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾ ਭਰਪੂਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ।

0: प्लस।
1: जी जनाब, ताकत प्लस को जब बूढ़े लोग इस्तेमाल करेंगे तो उनको क्या फायदा होगा, जोड़ों का दर्द भी इससे कम होगा, जो उनको थकावट होती है, ठीक है जनाब, वो क्या फायदा देंगे, क्योंकि इसके अंदर सफेद तिल है, ठीक है जनाब, खुश्क मेवाजात हैं जो कि प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर हैं, और ये बुजुर्गों के लिए किसी नेमत से कम बिल्कुल भी नहीं है।

0: समझना, बीमारी के बाद रिकवरी जो होती है, बीमार आप हो गए, आपका ऑपरेशन हुआ, ठीक है जनाब, उस दौरान बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाती है, या फिर आप किसी लंबी बीमारी से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं, तो उसके बाद जिस्म के अंदर बेतहाशा कमजोरी होती है और जिस्म को दोबारा ताकत में लाने के लिए डॉक्टर आपको बहुत सारी ताकत वाली चीजें लिखते हैं, डाइट आपको बताते हैं, लेकिन कमजोरी के बाद जब अगर आप ताकत प्लस को इस्तेमाल करेंगे तो आप यकीन कीजिएगा आपको 10-15 दिन के अंदर जो नतायज मिलेंगे वो सरप्राइजिंग होंगे। दो चम्मच नीम गरम दूध आपने इस्तेमाल करना है जनाब, नीम गरम दूध, सर्दियां मौसम तब्दील हो चुका है, ठीक है जनाब। और इसमें हम आपको कहते हैं कि चाहे आप वजन बढ़ाना चाहते हैं या वजन गिराना चाहते हैं, वजन कम करने के लिए हमारी वेट कम पेट कम है, ठीक है जनाब, और वजन बढ़ाने के लिए ताकत प्लस है, लेकिन दोनों को नीम गरम पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे बहुत मजा देगा। और ताकत प्लस का जो फ्लेवर है जब आप दूध के अंदर मिक्स करते हैं तो जड़ी बूटियां नीम गरम पानी के अंदर और ज्यादा आपको असर देती हैं, इफेक्ट देती हैं। तो नीम गरम दूध के साथ रात को सोते वक्त इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छा है, दिन के वक्त सुबह नाश्ते से पहले भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल का तरीका कार ये है कि एक गिलास या आधा गिलास दूध, जरूरी नहीं है एक गिलास हो, सिर्फ ये ड्रिंक बन सके आप लोगों के लिए, ठीक है, आधा गिलास हो या एक गिलास दूध का, नीम गरम दूध, उसके अंदर दो चम्मच आपने ताकत प्लस को मिलाकर जो है सुबह या रात को सोने से पहले आपने इस्तेमाल करना है।
1: नई जिंदगी का शुरू
0: जनाब। और गोलियां जो होती है ना, ताकत की गोलियां जो होती हैं या ताकत के जो सिरप होते हैं या इंजेक्शन होते हैं, आपको क्या करते हैं कि वक्ती तौर पर ताकत देते हैं, ये डॉक्यूमेंटेड बात है। आप जितनी भी महंगी चीजें ताकत वाली खरीद लें, आप यकीन कीजिए वो वक्ती तौर पर आपको ताकत देगी, लेकिन केसन ताकत प्लस जो है जड़ से जिस्म को गिजायत देता है, जड़ से जिस्म को गिजायत देकर अंदर से आपके जिस्म को मजबूत बनाता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है जनाब, फायदे ही फायदे।

शिफाय दर्द आप जब इस्तेमाल करते हैं तो जड़ से दर्द का खात्मा होता है, जड़ से दर्द का खात्मा होता है। ठीक है जनाब। इसी तरीके से ताकत के लिए जब आप गोलियों से हटकर एक नेचुरल गिजा की तरफ आएंगे तो जड़ से आपका जिस्म अंदर से जो है मजबूत होगा, चाहे वो आप बीमारी से उठे हैं या आम तौर पर आपकी गिजा ठीक नहीं है, मतवाजन गिजा नहीं है, तो भी आप केसन ताकत प्लस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ कहाँ आपको मिल सकता है? अगर आप जफराबाद में मौजूद हैं डेरा इस्माइल खान के अंदर, तो यहाँ पर खरोटी प्लाजा के बिल्कुल सामने है हाजी जनरल स्टोर, और इनकी दूसरी ब्रांच है अल फैसल मार्केट के अंदर फारूक जनरल स्टोर के नाम से। ठीक है जनाब, ये दो दुकानें हैं जफराबाद के लोगों से। और जफराबाद के लोगों, आपको मैं बता दूं कि जो केसन स्किन क्लियर फार्मूला है उसके सैंपल जो है वो हाजी जरी जनरल स्टोर के ऊपर हमने भिजवा दिए हैं, और उसके लिए हमने शर्त रखी है एक। ठीक है जनाब, शर्त क्या रखी है? शर्त ये रखी है, शर्त इसलिए रखी है कि लास्ट टाइम हमने जाफरानी साबुन के सैंपल बहुत ज्यादा दिए थे, ठीक है जनाब, लेकिन वो लोगों तक नहीं पहुंच सके। आप पहुंचेंगे क्योंकि उसके साथ हमने सेल को अटैच कर लिया है, तो खालिस उन्हीं लोगों तक पहुंचेंगे जो केसन के यूजर हैं। तो केसन की प्रोडक्ट आप वैसे भी खरीदते हैं, तो जब आप 1000 की प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको साथ में हमारा जो फार्मूला है केसन स्किन क्लियर फार्मूला, जो कि बहुत ही महंगा और कीमती फार्मूला है, सीरम से बना हुआ फार्मूला है, ये तकरीबन 3 दिन का ट्रायल हम आपको दे रहे हैं। 3 से 4 दिन ये क्रीम होगी, इतनी मिकदार के अंदर ये मौजूद है। तकरीबन मेरे ख्याल में ये क्रीम आपके 4 दिन चलेगी, 3 से 4 दिन आप इसे इस्तेमाल करेंगे, और फिर इंशाल्लाह 4th दिन आप पैसे उठाकर भागेंगे कि भाई ये क्या सैंपल था, ये क्या जादू दिखा के गया है, मुझे तो यही इसका पूरा पैक चाहिए। तो जनाब इनिशियली कहाँ पहुंचा है? जफराबाद में हाजी जरी जनरल स्टोर के ऊपर, केसन शॉप के ऊपर भी मौजूद है। आज हमने, मैं खुद केसन शॉप पर मौजूद था, तो कोई 4-5 बंदों को तो मैंने खुद अपनी तरफ से जो है स्किन क्लियर फार्मूला के सैंपल दिए, जिनकी 1-1000 रुपए की खरीदारी थी, उनको साथ में हमने स्किन क्लियर फार्मूला का सैंपल जो है वो 1000 की खरीदारी के ऊपर दिया है, जो कि 3 से 4 दिन का है।

जी जनाब, ताकत प्लस आपको हर जगह मिल रहा होगा और दुकानों के नाम हम उठाते चलें ताकि आपको पता चले कि कहाँ कहाँ मौजूद है। डेरा की बात कर रहा तो जफराबाद में हाजी जनरल स्टोर एंड फारूक जनरल स्टोर के ऊपर आपको मिलेगा। अगर आप द्राबन चुंगी की तरफ है तो आड़ा रोड के ऊपर मौलाना अलाउद्दीन साहब के मदरसे के बिल्कुल सामने है खान कॉस्मेटिक जनाब, वहां पर आपको हमारे सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। शे यूसुफ साइड के ऊपर है तो जाहद शॉपिंग सेंटर या फिर दरबार वाली गली के अंदर है उमर जनरल स्टोर जी, वहां पर आप हमारे प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। चुगल्ला के साथ बहुत सारी दुकानें हैं जैसे कि अमान हारसेरा, फारूक हारसेरा, फैमिली शॉपिंग सेंटर, इन सभी दुकानों के ऊपर हमारा न्यू प्रोडक्ट केसन स्किन क्लियर फार्मूला, केसन कोल्ड क्रीम और केसन डे टाइम क्रीम भी पहुंच चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले हफ्ते 3 क्रीमें एक साथ लॉन्च की है। सर्दी के लिए कोल्ड क्रीम है, ठीक है जनाब, तर क्रीम जिसको बोलते हैं खुश्की को खत्म करने के लिए, 200 रुपए इसकी कीमत है। दिन के वक्त चेहरे को ग्लो देने के लिए हमारी डे टाइम क्रीम है जिसका नाम है केसन लवली क्रीम, जो कि 250 रुपए की है। और ये हमारा केसन फार्मूला, केसन स्किन क्लियर फार्मूला आपको मिलता है 450 रुपए।

मदीना पहाड़पुर के अंदर, अविस जनरल स्टोर, जीशान कॉस्मेटिक, नवीद कॉस्मेटिक हर जगह, इसके अलावा हसीब जनरल स्टोर हैदर, यहाँ पर सब जगहों पर आपको हमारा ये नई प्रोडक्ट मिलेगी। इसके अलावा टांग के अंदर बिलाल मार्केट है जनाब, पेजू रोड के ऊपर, वहां पर बिलाल मार्केट के अंदर नसीम होलसेलर भाई बैठे हुए हैं। आज मेरी उनके साथ बात हुई है, टांग वालों मेरी बात सुन लो, टांग वालों से मुखातिब हो, और नसीम भाई से मैंने बात की है। मैंने कहा भाई लोग गिला करते हैं कि फिक्स रेट के ऊपर चीजें मिलती हैं, रियायत नहीं होती, तो आज उन्होंने कमिटमेंट किए मेरे साथ। उन्होंने कहा भाई फिक्स रेट के ऊपर नहीं, हम फिक्स रेट से 30

0: 40 रुपए चीज सस्ती भी देंगे आपके कस्टमर को केसन के जितने प्रोडक्ट हैं, और ऊपर ये ऑफर भी लगी हुई है 1000 रुपए के ऊपर एक चीज आपको। टांक वालों की बात कर रहा हूँ, ये ऑफर सिर्फ टांक वालों के लिए है, ठीक है जनाब। जो है नसीम जनरल स्टोर एंड कॉस्मेटिक स्टोर जो है वहां पर आपको क्या मिलेगा, 1000 की खरीदारी के ऊपर या तो आप मिल्की साबुन जो कि 200 रुपए का है वो आप फ्री ले सकते हैं, या फिर साथ में हमारी जो लवली क्रीम आई है, डे टाइम क्रीम है, बहुत ही प्यारी क्रीम है, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है, बहुत ही अमेजिंग किस्म की ये चीज है, डे टाइम के लिए, दिन के लिए, ठीक है जनाब। 250 रुपए इसकी कीमत है, ये आपको वहां पर फ्री मिलेगी, आपकी मर्जी है 1000 के ऊपर आप क्या लेना चाहते हैं। कहां जाएंगे, बिलाल मार्केट टांग का पता कीजिएगा, और वहां पर नसीम जनरल स्टोर होलसेलर हैं जनाब, उनसे पूछे। इंशाल्लाह जब आप जाएंगे कंप्लेंट शिकायत का अब इंशाल्लाह आपको मौका नहीं मिलेगा कि आप यहां पर कॉल करके शिकायत करेंगे कि भाई फिक्स रेट के ऊपर मिल रही है चीजें, कोई 20-30 रुपए नहीं छोड़ रहे, रियायत नहीं कर। वहां पर आपको रियायत भी मिलेगी और साथ में आपको एक चीज 1000 रुपए के ऊपर, ये उनकी तरफ से ऑफर है, तो जनाब जरूर जाइए, आप लोगों के लिए ऑफर लगी है और खरीदिए। इसके अलावा सदाम मार्केट के अंदर जो है मंसूर जनरल स्टोर हाजी जरबत खान का जो सेटअप है वहां पर भी सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, टांग के अंदर वहीद जनरल स्टोर, मदीना जनरल स्टोर, फहीम जनरल स्टोर, गुलाम जान जनरल स्टोर, इन तमाम जगहों पर आपको केसन नेचुरल पाकिस्तान के सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर आपको कोई चीज नहीं मिलती तो हमारा नंबर नोट कीजिएगा जिसके ऊपर आप लोग हमें कॉल करेंगे, 0344-936-3366, ठीक है जनाब। एक दफा फिर से 0344-936-3366, एक दफा फिर से मैं आप लोगों के लिए अपना जो फोन नंबर है उसको एक्टिव करने लगा हूं, तो अभी आप कॉल कीजिए 0344-936-3366 के ऊपर। और अगर आपने हमारा नया फार्मूला जो कि केसन स्किन क्लियर फार्मूला है अगर आपने ट्राई कर लिया है तो उसका फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एक कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम खलील भाई, क्या हाल है
0: जनाब? शबीर उस्ताद सन्नल मौजूद इन केएच कॉल, किवें हाल है सही? ठीक ठाक है तुसा?
1: अल्लाह दी मेहरबानी, शुक्र है। प्रोग्राम सुन रहे थे, मजा आंदा पे, मौसम भी अच्छा थी गए थे, और केसन मौसम ही छा गए थे, केसन भी माशाल्लाह छा गए,
0: छा गए ना केसन ही, तुम्हारे इलाके से केसन छाई भाई है सही?
1: जी बिल्कुल छा गए, क्योंकि तू प्रोडक्ट हूं आ दे पन्ना वो ये रहे ना अजन था ए का प्लस किया वत नाल है जे रहे ना स्किन क्लियर आला ए आ गया ता ए जे रहे ना ए वत सारा सर्दियां ए ब्रांड थी के सन 2026 ए 27 को क्रॉस करे थी माशाल्लाह
0: इंशाल्लाह जी। ते असा तो को एक बहु ही अमेजिंग ते जेरी सारी नवी प्रोडक्ट के केसन प्याज बादाम शैम्पू उन्होंने आए हुए प्याज बादाम, ठीक है सही? जेरा के बस ओ तैयारी मुकम्मल है, तैयार थींदा पे इंशाल्लाह तो को असा प्याज ते बादाम को बना हुआ शैम्पू देवण वाले हैं कि तो को मजा आवे सी। पहला ब्रांड है सारा जेरा सारा शैम्पू वदा है ना सब कुछ ज्यादा केसन दा विकण वाला प्रोडक्ट है, लेकिन उन दे बाद लोगों दी फरमाइश है कि प्याज वाला भी केसन दा होना चाहिए, तो प्याज नहीं असा सिर्फ प्याज वाला नहीं गिन के आंदे पे, प्याज बादाम ते एलोवेरा को बना हुआ शैम्पू असा तो देवण वाले हैं, जेरा के मार्केट दे विच एक रिकॉर्ड हो सी कि इतने त्रै बेहतरीन चीजा नाल असा तो बड़ा के शैम्पू देने पैसे।
1: बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह, खुशी की गल है जो जेरी चॉइस जेरे लिसनर दी हो सी, हर एक दी अपनी अपनी पसंद है, हर एक दा अपना अपना एक जायका है, अपना अपने एक बालां दी और इंसान दी बराबर दी जिल्द नहीं होंदी, खून दे विच बराबरी नहीं होंदी, अपने जिल्द अपने अपने विच खून दा एक ही होंदा है, ते उस दे मुताबिक जेरा जेरा जेरा उसको पसंद करे सी तो उसको पसंद के मुताबिक शैम्पू मिलती, तो माशाल्लाह ओ भी शैम्पू ते ए भी शैम्पू अपनी अपनी पसंद जेरा जेरी पसंद करे सी तो वही नाक सी मेरे को हूं प्याज आला तो प्याज आले मिल रहे थे बड़ी शहर नाल मिक्स करेंगे पे मैं तो आदा जो जेरा केसन का शैम्पू आए ले उसको एक क्रॉस कर रहे थे क्योंकि रिसर्च चौका थी
0: रिसर्च चौकी एलोवेरा खुश्की को खत्म करें प्याज वालों को त्रुट देनी प्याज वाला शैम्पू तुसे इस्तेमाल करे सो ना वाल त्रुट देने बिल्कुल ठीक है ते उंदे अलावा जेरा इंदी बादाम है ओ सिल्की पैदा करे ना यानी कि एक सारी रिसर्च है कि वालों वास्ते त्रै बेहतरीन कुदरती शैया केरे इन जेरे के इन दौर नुक यूज कीता वा सकदे ते इंशाल्लाह प्याज बादाम सारे शैम्पू दी पैकेजिंग मुकम्मल थी चुकी है व्हाइट कलर दी बॉटल है ते उते पिंक कलर दा ढक्कन होसी ते खूबसूरत किस्म दा शैम्पू सी तो मिलण वाला केसन दी तरफों
1: माशाल्लाह असा शुक्रिया अदा करे ने थोड़ा भी ते केसन कंपनी का भी क्योंकि हूं आज भी मेरे वो दूसरा आदमी है तो उसका ताकत प्लस वेट कम पेट कम ही इस्तेमाल थी अल्हम्दुलिल्लाह तो शब्द को भी एक बंदे ने इस्तेमाल की थी और हेवी स्कूल हेड मास्टर मेरे वाल गिरदे थे मैं शैम्पू कैसा का गिरता है बड़ा अच्छा मका केरे तरीके नाल मका आयल आके आयल मैं नहीं की तो पता को नहीं मका आयल लाजमे मजदूर अगर आयल ना लाने का वक्त मैं था जो सारा घर तू सजावे आयल लाजमी आई मैं आयल लाजमी आई
0: आयल तो बिल्कुल क्योंकि आयल जो रहा सही छह सात घंटे लगा रहा वालों के ना ठीक है सही ओंदा तो असर भी होंगे लेकिन शैम्पू जो लोग इस्तेमाल करे सन वो भी मुतमइन थी से ना सन की फायदा नहीं थी उन फायदा लेकिन ओदने सोने ते सुहागा उवेल होसी जेले तुसा नाल सारा केसन तेल इस्तेमाल करो तो वतों दे बाद केसन शैम्पू
1: बिल्कुल नहीं वाकई उसको मैं दसे ना ये बड़ा हैरान थे उसका के मैं आके केसन दे शैम्पू वने उज लाल ए तो वत दौड़े मैं के आयल लाजमी वाकई आयल लेसन दे वत को पता लग सी जो उजी ताकत कितनी ए लाजमी मैं के आयल लाल लेना
0: बिल्कुल जी बिल्कुल बहुत मेहरबानी तुसा लोगों को गाइड करेंदे रहंदे वे सही लोगों को रास्ता दिखेंदे रहंदे वे
1: गाइड के मैं का रात नी आज नी एक नु बंदा आई एजेड बंदा आई उसका के यार जे रहना मेरा खून नहीं बन रहा मैं को भूख नहीं लगती ते जे रहना कोई मैं बहु बार बार पी हकीमा दो ते टूट ना सकता ते उसको हला गंदी हला ते इस किस्म की बीमारी ते मुक्तरा मैं वो आज आया बैठे दो मैं उनको आके मैं को भूख ही नहीं लगती ते मेरी कमजोरी बन मैं कछे ताकत नहीं दी थी मगर तू ताकत प्लस में तक लिख के देना हूँ वन हिम फ्रीजी मैं को डे जी जी तो उनका कह मेरे को बड़ी खुशी थे जो देखे तीन लाख 500 रुपया तो ऐसा तो 55,000 लखों रुपए खर्च किए थे लेकिन तले तले लगे गए बस इंतजार है अल्लाह मान रहे वक्त इंतजार करेंगे मैं मौत है तो ये क्या कहते मैं तो उसा के कीमत तुझी 500 मैं तो बिल्कुल 500 बादाम थे इलायची थे एक इस किस्म के मैं तो सुखे मेले जगह रहना इतमान थे उनका तो नहीं मेरी अपनी मंजिश हुए सीढ़ी अलहमदुल्ला पीना मैं मोटा ना थींदा पिया मैं ताकत मेरे को नहीं मिलती पचती नहीं कोई मैं कहता चिंगरी नहीं आती मैं कहता कोई सुकून नहीं आया सी भूख ही लगा सी दर्द ही खत्म थी तो त्रीजे दी तू इन शाह 15 दिया जो बात हुआ पता करे तो कोई चौथे दी दस थी जो मैं अगे किए टूरदा तो उसे कह यार कीमत 500 बड़े हैरत उसे कह 5,000 जुड़े जब रेडी थे तो उनका हफ्ता थे
0: शुक्रगुजार सही प्रोडक्ट
1: कसम मैं चाहिए कोई खुशामद नहीं कोई करना लालच को नहीं सिर्फ स्टेशन ऐसा दीवाने क्योंकि स्टेशन ने साको शर्मसारी
0: बहुत शुक्रिया जनाब थैंक यू सो मच शबीर उस्ताद के एक फीमेल आई हुई थी और वो कह रहे थे कि भाई ना केसन ताकत प्लस से ना भूख क्यों लगती है कहती है कि मैंने इस्तेमाल किया भूख मुझे बहुत लगती है तो मैंने कहा आप कमजोर हैं तो कहते कि हाँ तो मैंने कहा भाई आपका जिस्म कैसे भरेगा जब आप सही तरीके से खुराक खाएंगी तब जाके आपका जिस्म भरेगा ऐसे तो नहीं भरता जिस्म आपका तो वो हंसने लगे तो भाई ये भूख लगवाती है ताकत प्लस आप जैसे इस्तेमाल करेंगे ना आपको जबरदस्त किस्म की भूख लगेगी अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम खलील भाई की हाल जी खाले
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक मुलाजिम बिरासा नाल रणवाल को मौजूद इन मुलाजिम परदेसी सोहेल मदरसे दे नाल इन दी दुकान ते भी केसन दे प्रोडक्ट मिल दें ते इन दे घर भी
2: बिल्कुल बस मेरे रणवाल दी जो मैं मुलाजिम दुकानदार रणवाल वाला ते सोहेल मदरसे दे नाल मेरी दुकान है घर भी प्रोडक्ट मिल दें केसन दे दुकान ते मिल दें जी
0: ठीक है जी ता किवें रश लगा पे लोग घिंदे पेन केसन दे प्रोडक्ट तां कि माशाल्लाह इंशाल्लाह भरपूर कोशिश है कि 5-6 दिन रहना शुगर फ्री भी आवाज ते महीने वाला भी आवाज भरपूर कोशिश है ठीक है सही
2: ठीक है जी सही है बस
0: इस्तेमाल सामने आए ठीक है जी ठीक
2: है
0: जनाब बहुत शुक्रिया जनाब तुसा पाइंदाबाद केसन जिंदाबाद केसन की हर एक रेंज एक ब्रांड है जनाब चाहे आप ताकत प्लस को ले लें, वेट कम को देख लें, हाजमा कंट्रोल, शिफाय दर्द को देख लें, या फिर ग्लूटावाइट रेंज। जी जनाब, ग्लूटावाइट रेंज के अंदर हम आपको क्रीम प्रोवाइड करते हैं, ग्लूटावाइट नाइट क्रीम, ग्लूटावाइट का साबन और ग्लूटावाइट का फेस वॉश। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उन्हें मौका देंगे। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम सर जी।
0: सर जी की मैं ठीक ठाक हिक्स वीड स्पीड पकड़ के दबे सब ब्रेक लगा छोड़ी वे
3: ब्रेक आ लेने बैठे थे तो पके रोड पे ब्रेक अच्छी की बैठे थे सर।
0: देखो
3: सर को हैं जी को कस्टमर ब्रेक लगा रहे ना सर,
0: ब्रेक लगा दे की हाल है सर। ठीक ठाक
3: अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रॉब्लम सुन दे पे हैं सबीर उस्ताद, आज भाई धुड़ मारी थी अल्हम्दुलिल्लाह।
0: मैं कुछ सही आवे दी है पता ही वे मजे दी यकीन करो मेरी चाह ठटी थी भाई, अगर शबीर साहब की कॉल ना आती तो बिल्कुल ठटी थी मैं आराम से चाह पीती है तो मेरे काम उन्होंने किया उन्हें के भाई हमेशा ही है जी।
3: माशाल्लाह सर जी, बस सारी फैमिली मेंबर पहले प्रोडक्ट इस्तेमाल करने पेंट के समझे ना
0: जी, पता है ना जी बिल्कुल,
3: बिल्कुल। प्रोडक्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह पास किया है ना, हूं जे नए प्रोडक्ट स्किन क्लियर है ना सर, इसको भी उन्ना 110 नंबर दे के पास किया है।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह,
3: वाटर लूटर है डबिया की डिमांड है। इंशाल्लाह कल मुलाकात थी केसन साहब से, केसन खरीदारी केसन शॉपिंग भी थी
0: केसन शॉपिंग भी थी माशाल्लाह जी। यानी तुहाडे घर ने तुहाडे घर दे फैमिली मेंबर्स ने सारे स्किन क्लियर दूते कामयाबी दी मोहर ला दीती है।
3: क्लियर एंड फेयर सर,
0: क्लियर एंड फेयर भाई, वाकई केसन ने जरे स्किन क्लियर फार्मूला बनाया, स्किन को क्लियर ते फेयर करें दे हैं जी।
3: बिल्कुल बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त है। इसके अलावा बाय प्रोडक्ट्स भी सारे फूटे पैन क्योंकि वाला चक्कर नहीं लगा ना सर जी, पारपुर को थोड़ा बड़े घिन के गुजारा करें देते हैं। कल इंशाल्लाह केसन जोड़ी मिल्की सोप बैजरे प्रोडक्शन सर जी, मतलब क्रैक क्रीम थी जी, क्रैक रिलीफ क्रीम थी,
0: क्रैक रिलीफ क्रीम, क्रैक क्रीम ना
3: हाँ हूं तो मौसम आ गया ना सर,
0: हूं तो मौसम आ गया बिल्कुल जी। स्पेशल पैकेज बढ़ा के दे
3: भाई,
0: जितने भी लोग सुनने पैन केसन शॉप ते जले तुस आसो तो को सर्दियां दा विंटर दही कितना जबरदस्त किस्म दा पैकेज बढ़ा के देसू, जेंदे विच कोल्ड क्रीम, जेंदे विच क्रैक रिलीफ क्रीम, लिप ऑयल, लोशन, ए सारे शिया मिल्की सोप, पांच प्रोडक्ट सर्दियां दे ना सही।
3: बिल्कुल
0: पैकेज बढ़ा के देसू तो बचत ही मजे भी
3: माशाल्लाह बस इंशाल्लाह कल मुलाकात करें शॉपिंग करें
0: इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह मोस्ट वेलकम जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब। साहब पहाड़पुर से मौजूद थे और इनकी पूरी फैमिली केसन को यूज करती है, और सबसे बड़ी बात मेरे लिए खुशी की बात, जब हमारी कोई नई प्रोडक्ट आती है ना उसका जब रिपीट आता है मजा आ जाता है। आज भी बहुत सारे कस्टमर आए रिपीट मांग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और रिपीट वही नहीं मांग रहे क्योंकि ये क्रीम तो बहुत सारे दिनों की चलेगी, ठीक है जनाब, ये 5-6 दिन की नहीं है, इसके में टाइम ज्यादा लगेगा, यानी कि ज्यादा देर चलती है। लोग देख कर बोलते हैं जो लगा रही हो वही मंगवा दो। अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम, क्या हाल है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। कौन इंसान नाल नान से सोपना से?
4: मैं हाफिजुल रहमान गाल कर नबी
0: फाजिल कुल डेर अशमल खान 91 को सुन दे पे वैसे ही।
4: जी हाँ मैं 91 को लिखा हूँ, सुन दा पे ना मैं चुंगे आस पवास करो इंडस्ट्री फाजिल नहीं।
0: हाफिज साहब क्यों हाल है? चंगे वेदे वे तुसा ठीक ठाक, तो वेलकम करे सो अपने प्रोग्राम दी सही।
4: जी अल्हम्दुलिल्लाह
0: ठीक है, मैं सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, प्रोग्राम सुन दे रहा है यार, नवे नवे सुख सुन
4: नहीं प्रोग्राम तो मैं बहुत पहले पुराना।
0: अच्छा पुराने लिस्टनर है माशाल्लाह, केसन को बहुत अरसे ते जान दे
4: मुलाकात भी थी नीचे बस मैं जानता।
0: अच्छा अच्छा
4: अच्छा, मैं बहुत मुलाकात
0: हाँ बस मैं शॉप ते तकरीबन सवेरे 10:30 को 2 बजे तक, ठीक है ते उन्दे बाद 5:15 को मगरिब तक, बस एको घंटा होंदे आजकल तो पते शामिल 6 बजे शाम थी वेंदी जी।
4: जी हमारी सलील भाई अर्ज है जो मेडिवल
0: जुल्म ते ज्यादती थी गया
4: بس
0: تسا آئل سارا استعمال کرو سو پہلی گارنٹی تے ہے کہ جتنے وال ڈھہ گئے سو ڈھہ گئے بہ ایک وال ہی نڈا سی گن کے رکھا ہے ان شاء اللہ ایک وال بھی نڈا سی
4: لیکن یہ بات
0: بالکل جمسن تسا سر میں کو آ کے اپنا دیدار کروے سو نا میں ہوں دیدار کو دیکھنے دے بعد تو کو دس دساں کہ اتنا وال نویں آ سکدے یا نہیں آ سکدے لیکن تہاڈی جتنی عمر ہے نا سی ان دے وچ 100% چانسز ہیں کہ تہاڈے وال ریکور تھی سن تے ری گروتھ تھی سی انشاءاللہ اگر نہ آ سکو تو بس تہاڈے علاقے دے وچ کراچی کاسمیٹک ہے سی کراچی کاسمیٹک شکیل بھائی
4: کراچی کاسمیٹک شکیل بھائی میرے اوکا واقف ہے نا تمہیں انہوں نے
0: میں کو تو کو کال کرنے دی ضرورت کو نہیں میں کو کال کرنے دی ضرورت کو نہیں شکیل بھائی کو کال کرو تو کو آکھو بھی وال دھانے پہن او بیا کوئی تیل تو کو دسے بھی نہ ہو تو کہ کیسن آئل استعمال کرو نویں وال ایو جو میں دے بے آئل شاید نہ جمعے لیکن ان دی گارنٹی ہے کہ نویں وال جم دے
4: میں پہلے تھوڑے نال ملاقات ضرور کرے سا جو میں دی دل لگ دا
0: ہوں اچھا لو تو رد دل لگ دے تے ضرور ملو سے انشاءاللہ مل سو ویلکم کرے سو تو گلے نہ لے سو تے تو نال چائے پی سو انشاءاللہ تے مزہ ہی آ سی ٹھیک ہے سی بہت شکریہ جناب حافظ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ جناب یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام میسیجز آپ لوگوں کے رہ گئے ہیں بھائی اور کل پڑھ لوں گا ٹھیک ہے جناب کیونکہ ابھی تو کوئی بھی ایف ایم والے مجھے میسج نہیں پڑھنے دیں گے کیونکہ جناب میسج بہت سارے آپ لوگوں کے پڑے ہوئے ہیں اور ٹائم ہمارا پورا ہو گیا تو جناب یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام امید ہے آپ کو پسند آ گیا میسج بھی آیا ہوا ہے کہ میسج والوں نے کون سا قصور کیا ہے استاد جی
5: کیسن طاقت پلس
0: چلو جی کل بڑی محبت کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ یہ میسج میں ریڈ بھی نہیں کر رہا کل آتے ہی پڑھوں گا اور معذرت کروں گا آج کالروں کو بہت زیادہ ٹائم دے دیا کل آپ کو دے دیں گے جناب کل تک کے لیے اجازت چاہوں گا اللہ نے کے بعد

0: मैसेज करके भी आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। आपका मसला हकीम साहब के सामने पेश किया जाएगा। जी समय हकीम साहब की तरफ हम जाएंगे। हकीम सैयद मशकूर अहमद साहब हमारे साथ इस वक्त लाइव प्रोग्राम में मौजूद हैं। हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।
0: एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि इतनी मसरूफ जिंदगी के अंदर और इतनी टफ लाइफ के अंदर और आपने जो है अपना कीमती वक्त निकाला हमारे चाहने वालों के लिए और उनको आगाही फराम करने के लिए, कीमती कीमती अच्छी अच्छी टिप के हवाले से बातें करने के लिए आप प्रोग्राम में शामिल हाल हुए। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं।
1: बहुत मेहरबानी आदिल साहब और शुक्रिया आपका और इस प्लेटफॉर्म का यानी रेडियो अमन का के जिसने एक रास्ता दिया है कि आप आगाही दे सकते हैं और उसमें इनका बहुत बड़ा हिस्सा है
0: जी।
1: दूसरा ये होता है कि एक आदमी का अपना एक शौक होता है कि यार अगर मैंने कुछ सीखा है
0: जी।
1: वो कहते हैं ना इलम बढ़ता है अगर आप उसे फैलाते हो या उसको डिलीवर करते हो। तो चीज यही है कि जो इलम है थोड़ा बहुत मेरे पास जो 32-33 साल इस फील्ड में गुजारे हैं, तो कोशिश यही है कि अगर किसी को किसी चीज से फायदा पहुंचता है
0: जी।
1: तो उसको डिलीवर किया जाए। और ये चीज है कि आप रहें या ना रहें, हो सकता है कल मैं ना रहूं
0: जी।
1: तो कम से कम कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो लोगों को याद होती हैं कि यार फला शख्स ने फला बात कही थी या फला कोई नुस्खा या फला कोई हमारी रहनमाई की थी
0: जी।
1: तो चीज ये है कि जब आप उस चीज को लेके चलते हैं तो वो एक तो सदका जारिया है ही है और आपके इलम में इजाफा होता है। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं कि उसका हमें भी नॉलेज नहीं होता, ठीक है ना। अब लोग मुख्तलिफ सवाल करते हैं, लोग मुख्तलिफ चीजों के बारे में बताते हैं, उसके बारे में पता चलता है कि मकामी जबान में इसे क्या कहते हैं या मकाम ये चीज वाकई हमारी नजरों से पहले नहीं गुजरी, हमारे तजर्बे में नहीं आई। तो उससे ये होता है कि हमारे इलम में भी इजाफा हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि जब आप किसी से सवाल करते हैं तो वो भी आगे से आपको सवाल करता है तो इस तरह एक चैन बन जाती है कि आप एक दूसरे से अपना इलम जो है वो शेयर कर रहे हैं और उससे आपको फायदा होगा, दूसरे को भी फायदा होगा।
0: बिल्कुल जी। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आते हैं। नाज़रीनो समाइन, बात यह है कि सेहत जो है ये तो एक बहुत बड़ी नेमत है और नेमतों का जब शुक्र अदा किया जाए और उसको उसमें अल्लाह ताला मजीद इजाफा फरमाते हैं तो हमें भी चाहिए कि अगर हमें अल्लाह ताला ने सेहत दी है तो हम उसका शुक्र भी अदा करें। और हकीम साहब कहते हैं, हमारे अक्सर मौलाना साहब दुआ भी मांगते हैं कि या अल्लाह बीमारी से पहले हमें सेहत का शुक्र अदा करने की तौफीक अता।
1: बिल्कुल ऐसा ही है, जब आप तंदुरुस्त हैं आप उस हालत में अगर दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे तंदुरुस्ती दी है, ठीक है, वो ज्यादा अहमियत है। देखिए बीमार होके तो सब दुआ मांगते हैं ना कि या अल्लाह मुझे ठीक कर दे। मजा उस चीज का है कि आप अपनी तंदुरुस्ती की हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करें, उससे खैर की दुआ मांगे और दूसरों के लिए दुआ करें, ठीक है, कि अल्लाह पाक इस दुआ के तफैल या जो जितने हमारे इंसान हैं अल्लाह ताला सब पे अपनी मेहरबानी करे। वैसे तो वो खालिक कायनात है, उसने हर अपनी मखलूक का ख्याल रखना है चाहे वो पत्थर के नीचे कीड़े क्यों ना हो।
0: बेशक,
1: तो
0: बेशक।
1: दूसरी सिर्फ ये होती है बात है क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड सेहत है तो उसमें यही है कि आप कोशिश करें हर इंसान इवन मैं भी बीच में शामिल हूँ कि हम अपनी तंदुरुस्ती की हालत में उसका लाख लाख शुक्र अदा करें, उससे दुआ करें कि अल्लाह पाक तंदुरुस्ती क्योंकि जाहिर है कि हजार नेमत है तो उससे बेहतर है कि आप हमें तंदुरुस्त हालत में रखें और क्योंकि है बीमारी एक आजमाइश है।
0: बिल्कुल। और हकीम साहब यहाँ पर एक और बात भी निकलती है, कुछ लोगों से हमने सुना है कि जो बीमारी आती है इसको बुरा भला नहीं कहना चाहिए। ये भी एक नेमत है लेकिन इसको मांगना नहीं चाहिए।
1: देखें ऐसा है कि अल्लाह ताला से हम इस्तगफार तो करते रहते हैं, ठीक है ना, किसी न किसी सूरत में, तो उससे हमसे कदम कदम पे गलतियां गुनाह ये चीजें होती हैं, कोताहियां।
0: बिल्कुल,
1: इंसान है वो गलती करेगा,
0: खता का पुतला।
1: बिल्कुल है, खता का पुतला है, गलती इसलिए करनी है। तो चीज ये है कि ये भी एक किस्म का उसका कह लें कि उतारना है कि आप अगर कोई बीमार होते हैं
0: जी,
1: तो वो आपका एक किस्म का
0: गुनाहों
1: को कुफारा अदा हो रहा है। तो उसमें इसीलिए कहते हैं कि यार कभी भी उसको एक तो कोशिश करें कि आप तंदुरुस्ती के हालत में भी दुआ करें, और अगर बीमार हैं देखें कहा यह भी गया है कि आपके जुम्मे फर्ज तो कई हैं एक बाहसियत मुसलमान के, और उसमें यह भी शामिल है कि आपने इयादत भी करनी है। कोशिश तो ये करें कि हर शाम आप किसी बीमार की इयादत करके फिर सोएं।
0: बिल्कुल,
1: बास किताबों में ऐसा भी लिखा है
0: बेशक
1: किसी चीज, लेकिन चले वो उतना टाइम तो आजकल किसी के पास भी नहीं है कि इयादत करे। हाँ, हम साया है या कोई कुलीक है या कोई रिश्तेदार है या कोई दोस्त है तो फिर बंदा करीब है, बंदा जाता है।
0: हालांकि हकीम साहब एक हदीस कुदसी है कि जिसने सुबह को किसी बीमार की इयादत की तो फरिश्ते शाम तक उसके लिए मगफरत की दुआ करते
1: हैं। ऐसा है, बिल्कुल
0: अगर उसने शाम के वक्त किसी की इयादत कर ली तो सुबह तक
1: उसके लिए सलामती के लिए बिल्कुल दुआ होती है।
0: अक्सर ये नेक लोगों को हमने देखा है कि ये सुबह के वक्त अपने कारोबार की तरफ जाने से पहले अस्पताल में एक विजिट कर लेते हैं, कोई बीमार होता है उसका जरा हाल अहवाल पूछ लिया।
1: बिल्कुल ऐसा ही है,
0: वो कहते हैं कि इसका अजर काफी ज्यादा है।
1: देखें उसमें ये भी है कि आप बीमार के पास जाएं, उससे अपने लिए दुआ करवाएं।
0: सुभान अल्लाह,
1: क्योंकि बीमार की जो दुआ है वो बहुत असर रखती है और जल्दी सुनी जाती है,
0: रद्द नहीं होती।
1: तो उसमें कोशिश यही हो कि आप बीमार के पास जाएं, उससे अपने लिए दुआ करवाएं। आप उसके लिए दुआ कर रहे हैं लेकिन उससे अपने लिए भी दुआ करवाएं। जब वो आपके लिए दुआ करेगा तो उसको अपना तो अजर मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उससे आपके लिए भी आसानियां पैदा हो जाएंगी। और ये है कि आप इसको अगर हम अपने पे लागू करें या हम इस पे पाबंद हों तो मैं नहीं समझता कि हम किसी उलझनों में या परेशानियों में या बीमारी में गुजरे। लेकिन इंसान है, फिर बात वही आ जाती है कि कदम कदम पे हमसे गलती होती है। हम
0: बेशक
1: थोड़ा सा ना शुक्रे हैं, हम
0: शुक्र
1: अदा नहीं करते। बिल्कुल है।
0: बिल्कुल बड़ी कीमती बातें की जी सैयद हकीम सैयद मशकूर अहमद साहब ने। नाज़रीन समाइन, बिल्कुल किसी भी हाल में हमें जो है मायूस नहीं होना, क्योंकि मायूसी जो है कुफर है। बीमारी जो है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आती है, या तो हमारे दर्जात बुलंद करने के लिए, या हमारी जैसे कि हकीम सैयद मशकूर अहमद साहब का फरमा रहे थे कि हमारी गुनाहों का कफारा बंद कराती है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, और अगर हाँ कोई भी मसला है तो अल्लाह ताला ने तबीब भेजे हैं, डॉक्टर्स भेजे हैं, आप उनके पास जाएं, उनके साथ मसला डिस्कस करें तो इंशाल्लाह सेहत जरूर मिलेगी। आज हमारे साथ भी हकीम सैयद मशकूर अहमद साहब बैठे हुए हैं। अगर आप लोगों के साथ कोई भी मसला है तो बिल्कुल घबराए बगैर, कोई फीस हकीम साहब हमने इनसे नहीं लेनी आज।
1: ऐसा करिए, फीस वाकई बिल्कुल नहीं है। और ये तो एक इलम है
0: जी,
1: और इसको पहुंचाना है, एक किस्म का ये एक फरीजा है।
0: बिल्कुल,
1: इसको आपने कंटिन्यू रखना है। तो फिर उसमें जाहिर बात है कि इसमें जब आप वो एक, मैंने अपनी एक डायरी में एक लाइन लिखी थी काफी अरसा पहले कि लालची तबीब
0: जी,
1: या मुआलिज कह लें, डॉक्टर भी है हकीम भी है उसमें,
0: बिल्कुल
1: लालची मुआलिज और कंजूस मरीज
0: जी,
1: ये दोनों ठीक नहीं हो सकते हैं।
0: दोनों बिल्कुल,
1: क्योंकि दोनों की फितरत में है लालच। तो जब लालच है तो वहां पर आप फिर कैसे खैर की उम्मीद रख सकते हैं। ये तो दवाई के साथ साथ दुआ भी की जाती है कि या अल्लाह हमारा इलम नाकस है, हमने अपनी समझ अपनी सोच के मुताबिक पेशेंट को देखा, उसका मर्ज सुना, उसको दवाई दी, आगे इसमें जो खैर है जो शिफा है वो तेरी जानिब से है, तो इसमें अपनी शिफा डाल दे, मरीज को सुकून मिले, वो ठीक हो, तो ये एक बहुत बड़ा है। तो चीज ये है कि आप दुआई के साथ साथ दुआ भी करते हो, तो अल्लाह पाक उसमें फिर अपनी खैर डालता है। लेकिन जब आप अपने दिल में लालच रखते हो
0: जी,
1: कि यार इसको मैंने हर हफ्ते बुलाना है, इससे मैंने हर हफ्ते पैसे निकलवा लेने हैं, बस ठीक है, तो उसमें फिर शिफा नहीं होती। हाँ, ये जरूर है कि आप अपनी तरफ से कोशिश करो और शिफा जो है वो अल्लाह ताला पे छोड़ देते। पैसे मरीज खर्चता है, इवन उसमें मैं भी हूं कि मैं भी बीमार तो हो सकता हूं।
0: बिल्कुल,
1: तो अब मैं पैसों से शिफा नहीं खरीद सकता, या अगर ये कोई कहता है कि मैंने लाखों रुपए लगा दिए अपने इलाज पे, तो वो शिफा नहीं खरीद सकता, वो इलाज खरीदता है। शिफा अल्लाह ने देनी है, कोई डॉक्टर कोई हकीम किसी को शिफा नहीं दे सकता जब तक अल्लाह ताला ना चाहे।
0: बिल्कुल, मुझे यहाँ पे एक बात याद आई हकीम साहब, एक बंदा मुझे कहीं पे मिला था किसी बड़ी हॉस्पिटल में, तो मैंने उसको कहा कि इस डॉक्टर के पास तो आपने काफ़ी पैसे लगाए हैं और आप बड़े स्लो स्लो ठीक हो रहे हो, और उसके बावजूद जब आप इस तबीब से मिलते हैं तो बड़े खंदा पेशानी से मिलते हैं। मैंने कहा इसकी वजह क्या है? उसने कहा यार सेहत जो है वो तो मुझे अल्लाह ताला ने देनी है, और जो मैं पैसे इसको दे रहा हूँ मैं इसको इलाज के नहीं दे रहा, जो मुझे ये वक्त दे रहा है, जो मुझे इसको मैं वक्त के पैसे दे रहा हूँ, कोई इसके पास कोई इसके नहीं। तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी।
1: नहीं बिल्कुल,
0: हम लोग अक्सर डॉक्टरों के पास या किसी तबीब के पास जाकर अगर कुछ फीस देते हैं तो हम ये समझते हैं कि ये हमने कोई ये कर लिया, हालांकि ये वक्त के पैसे होते हैं, बाकी सेहत तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी है।
1: तो ये देख मुआलिज है या मरीज है
0: जी,
1: पहली तो बात है कामयाबी के लिए इन दोनों का सिंसेयर होना बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों एक दूसरे से मुखलस होके चलते हैं तो शिफा जरूर मिलती है। दूसरी बात ये हो गई कि आप कोशिश करो कि अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश करो, रिजल्ट आप खुदा पे छोड़ दो। आप उसे दवाई दे सकते हो, आप उसकी दिलजोई कर सकते हो, लेकिन आप उसे शिफा नहीं दे सकते हो। शिफा अल्लाह ने देनी है। हकीम लुकमान अपने बेटे को नहीं बचा सके, ठीक है, हालांकि पूरी जड़ी बूटियां दरख्त उनसे हम कलाम होते थे कि मैं इस मकसद के लिए हूँ, मुझे इस्तेमाल कर सकते हो आप, ठीक है, लेकिन चीज ये है कि वो अपने बेटे को नहीं बचा सके, तो वो अपना सारा उस टाइम की किताबें और अपने नुस्खा जात वो सारे दरिया में फेंकने चल पड़े। तो उन्हें आवाज आती है गैबी तौर पर कि इसकी शिफा नहीं थी, इसकी जिंदगी इतनी थी, हमने इससे हलक से नीचे ही नहीं उतरने दिया दवाई को, तो ये ठीक कैसे होता कैसे? तो लिहाजा तुम्हारे इलम में कोई मसला नहीं है, इसकी जिंदगी इतनी थी, तो सो आप सिर्फ इलाज खरीदें और शिफा पे अल्लाह पे छोड़ें और नेक नियत से उसका इलाज करें, तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे।
0: बेशक, वो मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी आता है कि किसी उसके चाहने वाले के पेट में दर्द हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जो है उन्हें कोई इशारा दिया कि फलां जड़ी बूटी इस्तेमाल कर लें, तो वो जो है उन्होंने इस्तेमाल की या मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद की, तो कहते हैं कि ठीक हो गए। दूसरी मरतबा अल्लाह ताला से पूछा नहीं और खुद जब दर्द हुआ तो वहीं जड़ी बूटी खाई, तो उन्हीं से जो है सेहत नहीं हुई, तो अल्लाह ताला से फरमाया या अल्लाह पिछली बार मैंने ये जड़ी बूटी खाई थी तो मुझे सेहत मिल गई थी, इस बार तो दर्द और ज्यादा हो गया, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस जड़ी बूटी के अंदर सेहत रखी किसने थी?
1: ऐसा ही है ना,
0: तो मैंने रखी थी। तो हम जब भी कोई दवाई इस्तेमाल करते हैं इस यकीन के साथ करें कि या अल्लाह इसके अंदर तू हमारे लिए सेहत रख दे, तो इंशाल्लाह फिर अल्लाह ताला इंसान के दिलों के राजों को जानता है,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: उसी के मुताबिक जो है सेहत अता।
1: और जब भी दवाई खाई जाती है या अल्लाह शाफी, या अल्लाह काफी, और या अल्लाह माफी करके खाई जाती है, तीन दफा कहा जाता है, फिर दवाई को लिया जाता है, ठीक है। अब चीज ये है कि यहाँ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बादे पढ़ लेते हैं दवाई खाते हुए। अब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम तो है बरकत के लिए, ठीक है,
0: बिल्कुल।
1: असल में जो अल्फाज आए हैं वो ये हैं कि आप या अल्लाह शाफी, या अल्लाह काफी, और या अल्लाह माफी, फिर उसके बाद आप दवाई लें, कि आप अल्लाह से इल्तजा कर रहे हैं कि मुझे शिफा भी चाहिए, अगर मेरी कोई कोताही गलती है उससे मुझे माफी भी चाहिए, और तू ही काफी है, यानी तू ही है जो मुझे शिफा दे सकता है। तो उसमें यह है कि फिर अल्लाह ताला जाहिर है कादरे मुतलक है, तो वो फिर उसमें शिफा आती है, लेकिन हम लोग बस वो थोड़ा सा हमारी अवेयरनेस नहीं है, हमें वो उस चीज पे अभी इतना इलम नहीं है, तो उस वजह से फिर थोड़ा
0: मायूस
1: बनते हैं और हम मायूस हो जाते हैं। लेकिन मायूसी इसीलिए कहा गया कि मायूसी गुनाह है,
0: बिल्कुल।
1: देखें यहाँ तक कहा गया कि आप अपनी मौत की भी दुआ ना करें,
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि हो सकता है कि अल्लाह ताला ने आपकी जिंदगी में कोई आपसे कोई काम करवाना हो।
0: बिल्कुल हकीम साहब, आपकी बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन एक कॉल आ रही है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉल ड्रॉप हो गई है जी, चाहने वाले कॉल करें, इंशाल्लाह आपकी कॉल प्रोग्राम में जरूर शामिल की जाएगी। हकीम साहब, खुराक के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे कि आज मुझे किसी ने कहा حکیم صاحب کے ساتھ جب آپ پروگرام کرتے ہیں تو حکیم صاحب سے یہ پوچھیں کہ خوراک کے بارے میں ہمیں پلان تیار کر کے دیں, اس پر بات کریں گے. حکیم صاحب کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی پروگرام صحت کے بعد مشکور احمد کے ساتھ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کون صاحب کہاں سے ہیں جی؟ السلام علیکم. آج سگنل کا بہت بڑا ایشو ہے, سگنل بڑھ رہے ہیں اور کم ہو رہے ہیں, اس وجہ سے جو ہے نا یہ اس طرح ہی ہو رہا ہے. تو حکیم صاحب خوراک کا جو وہ کہہ رہے ہیں کہ پلان تیار کر کے دیں کہ ہمیں کس طرح یعنی کہ اپنا دن گزارنا چاہیے, اس بارے میں آپ کیا کہیں؟
1: دیکھیں پلان تو اس کا سیدھا سادہ ہے.
0: جی
1: آپ اپنا پلان, ہر آدمی کا اپنے گھر کا شیڈول ہوتا ہے.
0: جی
1: اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ آسودہ حال بھی ہیں, وہ اچھی چیز بھی استعمال کر سکتے ہیں, وافر بھی کر سکتے ہیں.
0: بالکل
1: کچھ سفید پوش ہیں بیچارے, تو ظاہر بات ہے وہ اپنے حساب سے بیچارے مینج کرتے ہیں. چیز یہ ہے کہ آپ جو بھی خوراک کھائیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سادہ ہی ہو لیکن آپ اس کو ایک طریقے سے لیں, یعنی آپ کوشش کریں کہ متوازن ہو اور آپ کے معدے پہ آپ کے بوجھ نہ بنائے. دیکھیں کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ بہت زیادہ آئلی سبزی, گوشت, دالیں, وہ آئل زیادہ پسند کرتے ہیں, وہ آئل زیادہ استعمال کرتے ہیں, یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں گھی استعمال کرتے ہیں, تب وہ ویسے ہی نقصان دہ ہے.
0: بالکل
1: معدے کے لیے بھی, دل کے لیے بھی, کولیسٹرول لیول بڑھے گا, چربی بڑھے گی وجود میں. تو چیز یہ ہے کہ آپ اس کو اگر وہی میانہ روی میں آ جائیں
0: جی
1: تو یعنی تھوڑی مقدار میں استعمال کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. دوسرا ہے کہ تیز مرچ مسالے اس سے کوشش کریں کہ ذرا تھوڑا سا پرہیز کر لیں.
0: بالکل
1: اگر آپ سرخ مرچ نہیں استعمال کرنا چاہتے تو پہلی تو بات ہے کہ ہلکی مقدار میں ہو, اور اگر دوسرا ہے کہ آپ کالی مرچ استعمال کر سکتے ہیں. کالی اگر مہنگی مرچ ہے تو پھر آپ سبز مرچ بھی ڈال سکتے ہیں.
0: بالکل
1: تو اس سے یہ ہے کہ آپ جتنی ہلکی مرچیں رکھیں گے آپ کے معدے پہ, آپ کی طبیعت پہ بوجھ نہیں ہوگا, جلن نہیں ہوگی. تو چیز یہ ہے کہ آپ, ہر انسان اپنا شیڈول خود بناتا ہے. پانی کا متوازن یعنی استعمال ہو, کم از کم دن میں 7-8 گلاس تو ہوں کم سے کم,
0: تاکہ گردے بھی صاف ہوں,
1: گردے صاف رہیں آپ کا پورا باڈی, کیونکہ دنیا قائم ہے 3 حصے پانی ہے, ایک حصہ خشکی ہے.
0: بالکل
1: باڈی کا بھی اس طرح ہی ہے کہ باڈی میں بھی پانی کا لیول ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 3 حصے پانی کر سکتے ہیں, ایک حصہ پہ ہم جسم ہمارا باقی کا. تو چیز یہ ہے کہ جب آپ کے پانی کا لیول کم ہوگا آپ کی جسم میں گرمی بڑھے گی, آپ کے ہاتھوں پیروں میں پسینہ آئے گا, بعض دفعہ آپ کی جلد خشک ہوگی. جیسے اب یہ ٹھنڈک آ رہی ہے
0: جی
1: تو اس میں خشک موسم ہے ابھی, یہ تو خیر موسم خزاں جا رہا ہے ابھی
0: جی,
1: تو یکم سے پھر جب موسم بہار شروع ہوگا تو اس میں یہ ہے کہ کافی بہتری آ جاتی ہے. لیکن یہ جو موسم خشک چل رہا ہے ابھی, اس میں ہماری جلد بعض اوقات خشک ہو جاتی ہے, ڈرائی ہو جاتی ہے.
0: بالکل یہ
1: بعض پھٹتے ہیں, ہاتھ پیر پھٹتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ جتنا پانی کا استعمال کریں گے وہ کم از کم آپ کی جو جلد ہے اس میں نمی رکھے گا, اور اس سے آپ کو کم از کم خشکی نہیں ہو پائے گی. تو یہ ہے کہ, اور جہاں تک کوشش کریں کہ اپنے معدے کو ٹھیک رکھیں, اور بازاری جو خوراک ہیں کوشش کریں کہ کم سے کم ہی استعمال ہو, تو زیادہ بہتر ہے. گھر کی تو دال بھی اگر صحیح بنی ہو تو وہ بھی ٹھیک ہے,
0: ٹھیک ہے. اگر وہ
1: بازاری چرگے سے تو کم از کم بہتر ہے,
0: بہتر ہے. صحت تو ہے اس کے اندر,
1: اس میں صحت ہے. اس میں آپ نے پتا ہے کہ میں نے اسے صاف طریقے سے تیار کرا ہے.
0: بالکل
1: باہر ہوٹلوں میں یہ چیز نہیں ہے,
0: صفائی ستھرائی کا خیال
1: وہاں یہ چیز نہیں ہوتی,
0: آئل بھی زیادہ یوز ہوتا ہے. بالکل
1: ڈال دیا, دھو دیا, بنا لیا. تو یہ چیز جو ہے وہ تھوڑا سا ہمارے اپنے پہ ہے. آپ اپنی خوراک کو, اپنے شیڈول کو خود بہتر کر سکتے ہیں.
0: حکیم صاحب مجھے یہاں پہ ایک آپ کے ساتھ بات کروں گا کہ میری جو وائف ہے نا
1: جی جی,
0: تو بچوں کو جب میں اسکول پہنچانے کے لیے لے کر جاتا ہوں تو وہ ٹیفن میں خود سے چپس تیار کر کے دے دی, یا خود سے انڈا بوائل کر کے دے دیا. تو کبھی کبھی میں اس کو کہتا ہوں کہ میں بازار سے یہ چیز لے لوں گا, تو وہ کہتی ہے کہ میرے بچوں کے لیے جو ہے نا میں خود ہوں نہیں,
1: صحیح ہے
0: میں یہاں سے ہی تیار کر رہی
1: ہوں. یہ سب سے اچھی سوچ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بازار میں جو چپس ملتے ہیں
0: جی,
1: اور کئی دفعہ آپ نے دیکھا بھی ہے کہ چھاپے بھی پڑے ہیں فیکٹریوں پہ, بازوں پہ گندا تیل ہوتا ہے. تو اس میں ظاہر بات ہے کہ وہ جو کھائیں گے تو وہ بچے اگر ابھی سے ہی ان کا معدہ, ان کے وجود میں گرمی, تو پھر کیسے مینج کریں گے.
0: بالکل
1: ٹھیک ہے, ہماری تو خوراک ویسے ہی گرم ہے,
0: اور ہم لوگ اوپر سے بچوں کو یہ जो यानी कि मैदे की बनी हुई टपॉप्स हो गए और दूसरी ऐसी चीजें दे देते हैं,
1: बिल्कुल
0: उससे भी जो है ना उनकी सेहत खराब हो जाती है।
1: जाहिर है कि अब बच्चे बाहर निकलते हैं, बाजार में जाते हैं, तो ये चीजें तो आम है, खाते हैं, और जब वो खाते हैं जाहिर है बाज़ औक़ात फिर उनकी तबीयतें भी खराब होती हैं। तो कोशिश कर, अपनी तरफ से इंसान कोशिश करता है, बाज़ औक़ात मकई मैंने माँ बाप देखे हैं वो समझाते हैं, डांटते हैं,
0: लेकिन बच्चे फिर भी नहीं
1: मारते हैं तो वो लाके नहीं देते, लेकिन बच्चे जब बाहर निकलते हैं
0: फिर
1: वो आजाद होते हैं,
0: बिल्कुल
1: वो फिर खुद ही लेके ले आते हैं। तो अब उसमें ये नहीं है, हाँ ये जरूर है कि बच्चों को प्यार से
0: समझाया
1: जाए,
0: अवेयरनेस दी जाए,
1: बिल्कुल। और बच्चा जब समझता है, जब उसके साथ बच्चा बना जाता है, अगर आप उसे सख्ती करेंगे हो सकता है वो आगे से खराब करें।
0: बड़ी कीमती बात की हकीम साहब आपने,
1: आप बच्चे को
0: बच्चे की लैंग्वेज में समझाएंगे, अगर आप उसको बड़े बनकर डांटेंगे तो वो
1: कभी
0: भी
1: नहीं,
0: फिर वो कहेगा कि ये जो अबू मुझे जिस चीज से मना कर रहे हैं लगता है कि ये मेरे लिए ठीक है, ये मुझे ऐसे सख्ती कर रहा है।
1: दफा होता है, आप बच्चे के साथ बच्चा बन जाएंगे, आप उसके साथ दोस्ताना माहौल में मिलेंगे, अब बच्चा घर से जैसा मर्जी लड़के झगड़ के गुस्से से मार खा के निकलेगा,
0: बिल्कुल
1: ठीक है, लेकिन जैसे ही वो अपने हम उम्रों के पास पहुंचेगा ना बाहर गली में
0: जी,
1: वो सारा कुछ भूल जाता है,
0: बिल्कुल
1: वो
0: बिल्कुल।
1: फिर खेलना मस्त हो जाता है, खेल में हो जाता है। चीज ये है कि आप अगर बच्चे को समझाना चाहते हैं तो आप उसे प्यार से समझाएं, उसके साथ बच्चे बन जाएं, वो आपकी बात फौरी तौर पे फॉलो करेगा,
0: बिल्कुल,
1: और समझेगा उस चीज को, और आगे से फिर उसको जहन में भी रखेगा। लेकिन जब हम वो डंडा उठा लेंगे तो फिर, या जुबान हम अपनी इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो गलत होगा। तो बाकी यह है कि हर इंसान कोशिश तो करता है कि अच्छे से अच्छा, और इसीलिए कहा गया कि आप अपने बच्चों की तरबियत ठीक करो, यानी आप उसको हर चीज कर रहे हो कि यार ये मेरा बेटा बड़ा होगा इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, फलाना हो जाएगा, लेकिन कोशिश तो ये होना कि वो अगर एक अच्छा इंसान ही बन जाता है,
0: बिल्कुल,
1: तो पूरी इंसानियत के लिए फायदेमंद हो गया।
0: माशाल्लाह, बिल्कुल। हकीम साहब, बच्चों की बात हो रही है तो हमें जो है टांग सिटी से एक मैसेज मौसूल हुआ है।
1: जी जी।
0: मोहम्मद कमरान साहब हैं, कहते हैं कि मेरे बेटे की उम्र 4 साल है
1: जी,
0: और जब वो सोता है तो दिन को तो ठीक होता है, लेकिन रात को तकरीबन 10 बजे के बाद वो रोता है कि मेरी ये जो पिंडलियां हैं इसमें दर्द है, और रात को कभी इधर जो है अंगड़ाई ली, कभी उधर अंगड़ाई ली, तो हम उसको कोई पेन किलर वगैरह दे देते हैं, थोड़ा सो जाते हैं, लेकिन ये रोजाना का मामूल बन चुका है। तो क्या हकीम साहब आपके पास ले आए या कोई मुफीद मशवरा हो? उम्र उसकी 4 साल है।
1: देखिये, बच्चा अभी बहुत छोटा है, जाहिर बात है बच्चा खेलता है, भागता है, दौड़ता है, स्कूल में भी है तो वो भी भाग दौड़ है, जाहिर है उसकी दर्द होती है। फिर दूसरी बात है कि बच्चे की हो सकता है प्रॉपर तौर पर खुराक ही ना हो, जिस तरह अमूमा देखा गया बाज बच्चे चाय पी के तो स्कूल दौड़ जाते हैं, एक तो टाइम सर पे चढ़ा होता है तो वो टीचर से डरते हैं, तो वो फिर बस्ता उठाते हैं बस जल्दी जल्दी चाय पी, बार दफा चाय भी ना पी के हम ये स्कूल में खा लेंगे, तो स्कूल में वही है बिस्किट है, चिप्स हैं और क्या है,
0: बिल्कुल।
1: तो चीज ये है कि उससे उसकी कमजोरी की वजह से,
0: अच्छा,
1: पट्ठों में कमजोरी की वजह से, थकावट की वजह से, फिर खून प्रॉपर तरीके से ना बने तो जाहिर है कि उसको फिर कमजोरी, रात को अकड़न आएगी, पिंडली दर्द करेंगी, दिन में तो उसे नहीं पता चलेगा ना, भाग दौड़ रहा है, खेल रहा है,
0: खून गर्म रहता है,
1: हाँ बिल्कुल। शाम को जब वो लेटेगा रिलैक्स पोजीशन में आएगा तो खून भी ठहराव पे हो आएगा, यानी पट्ठे अकड़ेंगे उसके। तो इसके लिए प्रॉपर इसका हल है, पहले तो आप ये देखें कि बच्चे की एक्टिविटीज क्या है, बच्चे की खुराक ठीक है, फिर उसके बाद उसको करें। और अगर आप इसको दवाई इस्तेमाल कराना चाहते हैं तो फिर इसके लिए कोशिश करें कि आप देसी तरीका अपनाएं, क्योंकि बच्चा है
0: छोटा,
1: आप अभी उसको स्टीराइड देंगे, पेन किलर देंगे, तो वो आगे जाके उसके लिए मसला बना देगा, फिर तो वो अभी से ही आदी होगा,
0: बिल्कुल,
1: तो उसके असाब और कमजोर होते जाएंगे, ग्रोथ तो उसकी होगी, हो सक कद भी बढ़ गया, जिस्म भी बन गया, लेकिन जो उसमें कमजोरियां रह जाएंगी वो फिर उसके लिए मुश्किल होगी आगे जाके। तो कोशिश करें, या अगर बेहतर तौर पर मशवरा चाहते हैं तो फिर यही है कि बच्चे के साथ किसी टाइम सुबह 8 से शाम 4 बजे तक दवाखाने पे भी मिल सकते हैं
0: जी।
1: तो हो सकता है मैं इन्हें कोई मुफीद उसकी बच्चे की खुराक ही बताऊं कि आप इसको ये डाइट तैयार करके इसके लिए दें, तो इंशाल्लाह इसकी जो ये थकन वगैरह है ये ना हो और इसको ये पेन किलर ना इस्तेमाल करना,
0: बिल्कुल। मोहम्मद कमरान साहब, आप हकीम साहब से मिलें, 8 बजे से लेकर 4 बजे तक हकीम साहब होते हैं, वो खुराक का जो प्लान है वो भी आपको तैयार करके देंगे, اور اس کے علاوہ مفید کوئی مشورہ یا دوائی ہوگی تو وہ بھی آپ کو دیں گے. کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. الحمدللہ صحیح. کون کتوں گال کریں دے پہوے؟ صادق علی صاحب ٹھیک ٹھاک.

0: उसको नहीं, लेकिन ये पोरों से क्यों निकल
1: हाँ, रहा है? यही वजह है ना कि अब बच्चा आता है, उसके बच्चा जिस्मानी हालत देख के उससे कुछ सवाल जवाब करके फिर कम से कम कोशिश करता है कि हम उस पॉइंट पे पहुंच सकें जो इसका रीजन हो सकता है, तो फिर उसके मुताबिक उसका इलाज हो जाता है।
0: बिल्कुल। हकीम साहब, बखर से आयशा बहन हमारे साथ हैं, पूछती हैं कि मेरे कमर में अक्सर दर्द रहता है, जब मैं झाड़ू वगैरह करती हूं तो उसके बाद काफी दर्द होता है, लेट जाऊं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊं तो उसके बाद दर्द में अफाका आ जाता है। हकीम साहब, कोई अच्छा सा कोई नुस्खा मुझे तजवीज़ करें ताकि ये कमर का दर्द जो है ये ख़त्म हो जाए।
1: देखें, उसमें अब ये चीज़ है, बाज़ दफ़ा मोरों का मसला बना होता है, हम लोग इतना गौर नहीं करते। बाज़ दफ़ा जो हमारे बैक के पट्टे हैं
0: जी,
1: इसकी वजह से भी होती है दर्द। अब दर्द तो कई वजहों से, बेहतर तो है कि ये या तो मोरों का एक्सरे करवाएं ताकि पता चले कि कोई डिस्क में तो कोई मसला नहीं है या रीढ़ की हड्डी में तो कोई मसला नहीं है। बाकी जहां तक है नुस्खे का, तो उसके लिए ये कर सकते हैं कि आप 50 ग्राम असगंध ले लें, उसमें 50 ग्राम आप कमरकस ले लें और 50 ग्राम आप उसमें डाल लें मुसली सफ़ेद डाल लें, ठीक है। इन तीनों को आप जो है ग्राइंडर कर लें
0: जी,
1: और इसका सफ़ू बना लें। अगर चाहें तो आप इसमें गोंद भी शामिल कर सकते हैं, गोंद किकर कर लें, ठीक है। ये तीन चार चीज़ें जो हैं इनको आप पीस के और हाफ टी स्पून आधा आधा चम्मच जो है छोटा चाय वाला, वो एक कप नीम गर्म दूध के साथ सुबह और शाम दो टाइम ले लिया करें, खाने के आधे घंटे बाद, खाने से पहले भी ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है।
0: अच्छा।
1: तो उसमें यह है कि इंशाल्लाह चंद दिनों में इनको अपने में थोड़ी सी तब्दीली महसूस हो कि मेरी कमर थोड़ी मजबूत हो रही है, और दूसरा यह है कि आप कोशिश करें कि थोड़ा ड्राई फ्रूट थोड़ा सा ले लिया करें।
0: बिल्कुल, अच्छी बात है। हकीम साहब, मोहम्मद हफीज़ुर रहमान हैं, उस दिन भी इन्होंने मैसेज किया था लेकिन काफ़ी लेट आया था, जब प्रोग्राम ख़त्म हो गया था, अभी भी इनका मैसेज आया है। कहते हैं कि जो बे औलाद जोड़े हैं, क्या इसका तिब के अंदर इलाज मुमकिन है? और कुछ लोग कहते हैं कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, फिर जाकर कहीं जो है ये होता है, इस बारे में ज़रा हमारी रहनुमाई फरमाएं और हम जो है दवाखाने पर तशरीफ लाना चाहते हैं।
1: देखिए, पहली तो बात है कि आप अपनी रिपोर्ट्स के साथ दवाखाने पे आएंगे
0: जी,
1: ताकि रिपोर्ट्स पे गौर हो कि असल वजह क्या है, रिपोर्ट आपकी क्या शो कर रही है।
0: बिल्कुल।
1: दूसरी बात ये है कि इसका इलाज जो है वो देसी में या तिब में कह लें या यूनानी तरीका इलाज कह लें कि वो बहुत बेहतर है। कम अज कम आपके वजूद में कोई और ऐसा अंसर पैदा नहीं होता जो गर्मी कर दे या मैदा डिस्टर्ब कर दे या कोई नुकसान दे, नहीं होगा
0: जी।
1: दूसरा यह है कि टाइम की जहां तक बात है, टाइम इतना नहीं लगता उस पे भी।
0: अच्छा, किसी ने डराया है ऐसे
1: के? बस वो हर आदमी की यहाँ मशवरे देने वाले तो बहुत है ना उसमें यह है कि अगर बहुत भी चले तो ये ज्यादा से ज्यादा 90 दिन तक चलता है, इससे कम नहीं होता है।
0: अच्छा।
1: तो बाकी यह है कि अब देखा जी जाता है कि इनकी दोनों की रिपोर्ट्स क्या कहती है, लेकिन स्पेशली और खासकर जो है वो मर्द की रिपोर्ट। अगर भाई बेशक घर से ना लें अपने पार्टनर को, उनकी रिपोर्ट ले लें
0: खुद,
1: ठीक है, और खुद आ जाएं, और अगर उनकी रिपोर्ट ओके है, यानी लेडी डॉक्टर ने तो जाहिर है उनको देख के बताया ही होगा, तो फिर अपनी रिपोर्ट लाजमी साथ लाएं। बाद दफा होता है कि टेक्निकल कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसमें वो देखे जाते हैं कि आया इसका इलाज, और इसका इलाज बिल्कुल मौजूद है। कई ऐसी चीजें हैं कि जो आपकी जो जरासीम हैं उनको बढ़ाती हैं, उनको पैदा करती हैं, बशर्ते कि आपके अंदर एक जरासीम भी मौजूद हो,
0: माशाल्लाह,
1: फिर उसको भी बढ़ाया जा सकता है। देखिए, आप एक बीज भी आपके पास है तो आप कम से कम फसल ले सकते हैं, यानी एक पौधा ले सकते हैं उससे। तो इसी तरह ही है कि अगर आपके जिसमें एक भी जरसूमा एक जरासीम मौजूद है, उसको बढ़ाया जा सकता है, उसको ताकतवर किया जा सकता है। और बाकी जहां तक औलाद का है वो अल्लाह के हाथ में है, वो जब चाहे
0: जिसको चाहे
1: दे, बेटियां हैं तो बेटियां दे, बेटे हैं तो बेटे दे, चाहे तो दोनों ना दे और चाहे तो दोनों ही दे दे वाफर में। चीज यह है कि हाँ, उसका इलाज मौजूद है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह

0: 100% श्योर है
1: बिल्कुल ये आए दवाखाने।
0: हाँ ये आ सकते हैं, आके मशवरा जरूर कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट्स के साथ आए।
1: बिल्कुल। जी सही सरायकी दी विच वी मैं गल करे सा कुछ सजना दे पैन के आदिल बिरा सरायकी गल नहीं वे करे ने पै। जी बिल्कुल, अगर तुहरे नाल कोई किस्म दा भी मसला है, रिंगड़वा है, खूनी बवसीर है, बादी बवसीर है, खांसी है, जिल्द दा कोई मसला है, या तू सके अरसे कोल भी कोई मसले दा शिकार ही वे लेकिन तुहे को गल करे दे तुहे को शर्म आंदी है, शर्म महसूस करे दे वे, तो हुण तू शर्म नहीं महसूस करनी क्योंकि हकीम सैयद मशकूर अहमद साहब बहु ही अच्छे तबीब हिन जो के अल शिफा दवाखाना दुते सवेरे 8 बजे कुल गिन के 4 बजे तक मौजूद होनन। ते अल शिफा दवाखाना किता थी वेंदे ए जनाब ट्रैफिक पॉइंट जा कोण खत्म नबूवत चौक आका वेंदे मशहूर जाहे जी उंदे नाल शवाल मार्केट है। शवाल मार्केट दे विच तुसा सवेरे 8 बजे कुल 4 बजे तक जेरे वेले भी वेले थी वनो तुसा आके अपना मसला हकीम साहब दे अगू रखे। सो हकीम साहब तो को उंदे हवाले दे नाल मुफीद मशवरा भी देसी ते ना सिर्फ मशवरा देसी बल्कि तुहाडा इलाज भी करे सी ते उन्हां हकीमां चो या उन्हां डाक्टरां चो नहीं जेरे के बहु सारे पैसे छि गिनन नहीं, इनशाला जायज पैसे गिनसन ते इनशाला तुहाडा इलाज करे सन।

0: حکیم صاحب ایک بھائی ہیں کہتے ہیں کہ میرے جو اور بھائی ہیں ان کا قد تو کافی لمبا ہے لیکن میرا قد جو ہے وہ چھوٹا ہے, مجھے کوئی ایسی خوراک بتائیں کہ میرا قد لمبا ہو. ان کا مسئلہ یہ کریں گے, ایک کال آ رہی ہے, کال لیتے ہیں. السلام علیکم جی, پروگرام صحت کی بات.
1: سلام جوڑے.
0: الحمد للہ ماں خوش ضرور سوکھ اکم جی جان اکم جی نا جی
1: حکیم صاحب سرنگ دشتا برابر تو جوڑ دا
0: الحمد للہ جی
1: الرجی میں تھا دانے ربانے خطرے دانے خصوصی
0: جی جی اچھا ڈیر سو بتونا آدھا شیان خوب پکوڑے موکوڑے خو نخرے سو بات موبات خور ہو جی
1: مزوری
0: اچھا کم جی نا جی دا سو نم چودا اچھا نم دے دا جی محمد علی صاحب صحیح دا جی تاسو بڈی کلینا جی ڈیرا مننا جی تاسو مسئلہ حکیم صاحب تو مجھ جی پیش کو جی ڈیرا مننا جی حکیم صاحب محمد علی صاحب ہیں گرا بڈا سے کہتے ہیں کہ مجھے پہلے بہت دانے نکلے تھے لیکن ابھی بھی ایسے جیسے کوئی کانٹے چپتے ہیں مجھے الرجی کا مسئلہ ہے
2: صحیح ہے اب اس کے لیے ہے کہ محمد علی صاحب اگر تھوڑا سا ٹائم نکالیں تو دوا خانے پہ ان کو آنا پڑے گا ایک مرتبہ تاکہ اس دیکھا جائے کہ الرجی ہے خشک ہے تر ہے خارش کون سی ہے اور اس کے مطابق پھر اس کی دوائی تو ہے تو انشاءاللہ ان کا جو ہے یہ دانوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا دانے نہیں نکلیں گے ہاں یہ ضرور ہے کہ جو تھوڑی سی زبان چٹپٹی ہے تو وہ ذرا تھوڑا سا کچھ دیر کے لیے سموسے پکوڑے یا کہہ لیں یہ صحبت کم سے کم ہی کریں کوئی تقریباً ہفتہ دس دن پندرہ دن کے بعد اگر کھا لیں تو وہ بہتر ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ تیز مرچ مسالے ہو گئے, بہت زیادہ تیل والی چیزیں ہو گئیں, یا یہ شیور مرغی ہو گئی, اس سے ذرا خصوصی پرہیز کر لیں.
0: جی محمد علی صاحب نے ہم سے سوال پوچھا, حکیم صاحب نے بڑا اچھا مشورہ بھی دیا, اور بات یہ ہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے, ہمیں احتیاط ضرور کرنی چاہیے. ایک اور کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی, کون صاحب کہاں سے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ؟
3: میں فیض سے بات کر رہا ہوں.
0: جی جی
3: میں سلام پیش کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو.
0: جی
2: وعلیکم السلام.
3: اور آپ کو بھی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, میرا بیوٹی ہے تقریباً 7 سال 8 سال شروع ہوگا.
0: جی جی بالکل.
3: تو اس کا تو پہلے سر میں جو ہے نا یہ دانے مانے وغیرہ بہت سر اس کا خراب تھا, غریب کا جو ہے نا بڑے بڑے بال تھے اس کا جو ہے نا سر ہم نے گنجا کیا.
0: اوہو اچھا جی.
3: پھر اس کے لیے جو نا دم وم وغیرہ کرایا ہے, پھر اس کا جو نا سارا ورے کانوں کا نیچے سے یہ خراب ہو رہے تھے.
0: اچھا جی جی.
3: پھر وہ تو ماشاء اللہ بھی سیٹ ہو گیا, ابھی اس کے پاؤں کے دانے وغیرہ جو نا شروع ہوئے, ایک ٹھیک ہوتا ہے دوسرا نکلتا ہے, دوسرا ٹھیک ہوتا ہے تیسرا نکلتا ہے.
0: اچھا.
3: اس طرح سیفران کا جو دوائی ہوتا ہے گولیاں ہوتا ہے وغیرہ یہ ہم استعمال کرتے ہیں, فرق نہیں آتا ہے. ہم نے بولا ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کرتے ہیں کہ
0: جی
3: یہ کیا طریقہ کریں گے, اس کے ساتھ بچی ہے تکلیف ہوتا ہے اس کو.
0: بالکل جی
3: تکلیف ہوتا ہے.
0: بالکل جی, آپ کا مسئلہ حکیم صاحب کے سامنے رکھتے ہیں. اپنا نام ایک بار پھر بتا دیں جی, پیزو سے آپ بات کر رہے ہیں, نام کیا ہے جی آپ کا؟
3: میں عمران بات کر رہا ہوں.
0: جی جی ٹھیک ہے جی. محمد عمران بھائی اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کو صحت عطا فرمائے. حکیم صاحب سے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہمیں مشورہ دیتے ہیں. بڑی مہربانی جی پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. پیز اسے عمران صاحب 7-8 سال کی بچی, پہلے سر میں دانے بال کٹوا دیے لیکن ابھی پاؤں پہ ایک ختم ہوتا ہے تو دو اور ہو جاتے ہیں. حکیم صاحب کیا کہیں گے؟
2: دیکھیں بیٹی کا مسئلہ ایسا ہو سکتا ہے, بعض دفعہ خون میں فساد کہہ لیں ہم اپنے لفظوں میں اگر کہیں
0: جی,
2: اور اس کی وجہ سے بھی دانے نکل آتے ہیں. اور جو جیسا کہ انہوں نے کہا کافی علاج بھی کروائے ہیں, دم بھی کروائے ہیں, اور ابھی بھی وہ اینٹی بایوٹک ہی دیتے ہیں
0: وقتی طور پہ
2: کرنے کے لیے. لیکن بعض دفعہ یہ ہو جاتا ہے کہ دوائیوں کا ری ایکشن بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ بچی ہے 7-8 سال کی ہے, तो उसको अभी से ही अगर एंटीबायोटिक पे डाल दिया जाए तो वो मुनासिब तो नहीं लगता। मेरा तो भाई को यही मशवरा है कि आप बेटी को एक मरतबा जरा दवाखाने पे ले आए
0: मुकम्मल देख
2: लिया ताकि उसके जो पैर हैं उनका भी मुआयना हो जाए, दानों का भी मुआयना हो जाए कि असल में है वजह क्या। तो लेकिन इतना जरूर है कि इंशाल्लाह दाने खुशक होंगे, इंशाल्लाह ताला दाने खुशक होंगे और उसके खारिश या जलन या ऐसी कोई चीज नहीं होगी।
0: माशाल्लाह बिल्कुल हकीम साहब, एक कॉल लेते हैं हकीम
2: जी। जरूर,
0: अस्सलाम वालेकुम जी। अलहमदुल्ला जी, तासो दुआ गाने दी अब प्रोग्राम चे दिहार कलेवायु जी, सो कम जी ना जी। जी जी चनुम दादा जी।
3: हेलो
0: जी जी, आवाज रजीत जी, इमरान भाई डबरे ना जी। जी जी जी जी बिल्कुल हकीम साहब ने पूछता ना को बादाम बादाम ला पा रहे बादाम बिल्कुल जी मशवरा कहो जी बिल्कुल डेरा मनाना जी। मेहरबानी हकीम साहब, मोहम्मद इमरान डबारा से हैं
2: जी जी,
0: कहते हैं कि हमारा एक पेशेंट है जिसे के काला यारकान है गालिबन ना पीला यारकान है, जेड जो है ना वो मेरे ख्याल में पीले को कह रहे थे कि पीला यारकान है उन्हें
2: जी,
0: और बहुत कमजोर हैं पेशेंट, तो उन्हें किसी ने बादाम खाने के लिए कहा था, तो क्या उससे यारकान बढ़ेगा तो नहीं?
2: लेकिन बादाम की तासीर वैसे गर्म है।
0: अच्छा
2: ठीक है, हाँ अगर उसे रात को भिगो दिया जाए पानी में यानी तीन चार दाने
0: जी जी,
2: और सुबह उन पानी को फेंक दिया जाए और उसका छिलका उतार लिया जाए
0: जी,
2: तो फिर आप उसे खा सकते हैं,
0: नुकसान नहीं।
2: ठीक है, फिर उसकी वो जो तेजी है या वो जो गर्माइश है, क्योंकि ज्यादातर उसके जो है ऐसे असरात वो हैं उसके छिलके में।
0: अच्छा।
2: और जब हम कच्ची हालत में जाहिर है गिरी खाते हैं
0: जी जी,
2: तो छिलका उतरता नहीं है उसका। उसका बेहतरीन तरीका तो ये है कि आप जिस तरह बादामों की सरदाई बनती है कि हम उसे घोटते हैं और वो फिर ठंडक में आ जाती है, सरदाई गर्माइश को मारती है, गर्मियों में इस्तेमाल होती है, तो आप उसको बादाम बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं,
0: थोड़ी सी मिकदार,
2: थोड़ी मिकदार में, यानी तीन चार दाने हो, ताकदाद में हो तो ज्यादा बेहतर है, तीन हो जाए, पांच हो जाए, सात हो जाए, तो आप उसे यकदम तो नहीं, आप तीन दानों से शुरू कर सकते हैं। रात को आप तीन दाने एक छोटी प्याली में पानी लेकर उसमें डाल के रख दें, सुबह वो पानी फेंक दें
0: और वो बादाम
2: और वो बादामों का छिलका उतार के तो बादाम चबा के खा लें।
0: माशाल्लाह इससे फायदा
2: होगा, तो उससे इंशाल्लाह उम्मीद है कि फायदा होगा।
0: हकीम साहब वक्त भी हमारे पास मुख्तसर है, यरकान के जो पेशेंट इस वक्त हमें सुन रहे हैं तो आप उनको क्या मुफीद मशवरा
2: देंगे? उनके लिए तो बेहतर है, सबसे बेहतर है पपीता।
0: पपीता जी जी,
2: ठीक है, पपीते का रस वो पीते हैं या उसका जूस तैयार करके पीते हैं तो पपीते के बहुत फायदे हैं। दूसरे लफ्जों में जो इसको बेहतर रहता है वो फिर कुमाद है या गन्ना है।
0: अच्छा।
2: कि आप उसका रस इस्तेमाल कर सकते हैं,
0: उससे
2: भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो चीज ये है कि आप असल में देखा यह जाता है कि मरीज की बॉडी, उसका मिजाज या उसका और क्या मसला है। अब चीज तो वो इस्तेमाल करेगा, आगे से मैदा भी उसका इस काबिल है कि वो उसको हजम करे, ठीक है। अब मैदा उसका इस काबिल नहीं है, मैदे की अपनी तेजाबियत है, मैदे आगे गर्माइश है, तो फिर मुश्किल होती है। सबसे पहले उसके मैदे की गर्मी जब खत्म की जाती है तो उसका जिस्म ऑटोमेटिकली उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, हिद्दत कम हो जाती है, उससे काफी हद तक पड़ता है। और दूसरा ये है कि आप इस तरह भी कर सकते हैं, अब जिस तरह के रात को शबनम गिर रही है, मौसम ठंडा हो गया है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक गाजर, अब गाजरों का सीजन आ रहा है आगे
0: जी,
2: तो आप एक गाजर लेके उसके साफ कर लें पहले
0: जी,
2: और रात को उसको आप रख दें, एक चीनी की प्लेट हो तो ज्यादा बेहतर है, उसमें आप रख के खुले सहन में रखें ताकि रात को शबनम जो है वो उस पर गिरे। सुबह आपने उस गाजर को फिर धोना नहीं है।
0: अच्छा, उसी शबनम के साथ ही,
2: उसी शबनम के साथ आपने उसको कद्दूकश कर लेना है। वो चाहे तो आप उसे दूध में थोड़ा सा डाल के खीर की तरह उसको जरा गाढ़ा कर लें। अच्छा, चाहें तो आप थोड़ा मीठा बीच में डाल लें, तो वो आप नाश्ता आप उसका करें।
0: अच्छा,
2: और अगर भूख लगती है तो फिर आप घंटे डेढ़ घंटे के बाद आप नाश्ता कर लें,
0: बिल्कुल
2: ठीक है आप, लेकिन निहार मुंह आपने वो खाना है। अच्छा, और अगर आप उस तरह नहीं करते फिर ये है कि आप उसको उसके बीच में से जो वो उसकी जो गिल्टी होती है या उसकी जो कह लें
0: जो बोन जो है
2: वो निकाल दें और उसकी बारीक बारीक काशे काट के वो आप गाजर खा लें,
0: तो उससे भी बड़ा
2: उससे भी फायदा पहुंचेगा इंशाल्लाह।
0: बहुत मेहरबानी हकीम साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बल्कि पूरा एक घंटा हमारे चाहने वालों को आपने दिया, उनके मसाइल भी सुने, उनको उसके बारे में हल भी बताए और बहुत उम्दा उम्दा बेहतरीन बेहतरीन टोटके भी बताए। इससे तो मुझे भी काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, मैं भी साथ में जो है नोट कर रहा होता हूँ कि कहीं वक्त पे किसी ने पूछ लिया तो मैं ये टोटका हूँ किसी को बता सकता हूँ।
2: उनकी वजह से यह है कि मेरे लम्हे भी इजाफा हो जाता है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जब वो पूछते हैं तो वो फिर मेरे जहन में भी मुझे उसको जहन में लाना पड़ता है कि क्या इसके, लेकिन वक्त की कमी और दूसरा हम थोड़ा सा पाबंद होते हैं कि हमने हमारे पास दूसरे भी कोई होता है जिसको टाइम देना होता है, हमारे अपने मामला होता है कि स्टडी करनी है कोई नुस्खा देखना है तो उसके लिए फिर टाइम शॉर्ट होता है, वरना दिल नहीं जाता। और कोशिश यही होती है कि जो हमारे लिसनर सुन रहे हैं, जो इतनी मोहब्बत दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, तो इनको वो चीजें बता दी जाए जो इनके अपने बावर्ची खाने से ही ये अपना मकसद हल कर लें, तो उसके लिए इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में इनको हर प्रोग्राम के लास्ट में कोई ना कोई दो तीन नुस्खे या दो तीन टोटके ऐसे होंगे कि जो जो छोटे मोटे मर्ज होते हैं तो उसको ये अपने बावर्ची खाने से ही रिकवर कर सकते हैं।
0: बड़ी मेहरबानी,
2: बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया
0: देने के लिए और इतना जो है दर्द रखने के लिए पेशेंट्स के लिए। नजरीन समाइन, वक्त बिल्कुल कम है, आखिरी चंद लम्हे हैं, जाते जाते यही दुआ दूंगा कि तमाम जितने भी बीमार हैं अल्लाह ताला तमाम को सेहत अता फरमाए और जो लोग सेहतमंद हैं उनको अल्लाह ताला बीमारियों से बचाए। अपने मेज़बान मोहम्मद आदिल सियाल को, मेरे हमराह हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब को इजाज़त दीजिए ज़िंदगी और सांसों ने वफा की, तो इंशाल्लाह सेम टाइम सेम चैनल पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक हमें इजाज़त दीजिए, अपने और अपने चाहने वालों की सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।

0: 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
1: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क
2: सावरे रेडियो अमन
3: रेडियो अमन।